निगाह में, तेरी निगाह में साबित नहीं खुदा का वजूद, मेरी निगाह में साबित नहीं वजूद तेरा। यानी तू कह रहा है खुदा नहीं, मैं कह रहा हूँ तू नहीं है। तू कह रहा है खुदा नहीं है, मैं कह रहा हूँ तू नहीं है। तू कहता कि मैं हूँ, जैसे तुम मैं हूँ तो खुदा होना। सलावत पढ़ी मोहम्मद वाला इदराकात में। हम लोग जो परेशान हैं, क्यों परेशान हैं? हम लोग दो चीज़ों को मखलूत कर देते हैं। कुरान ने हमें गाइड किया, ला तलबिसुल हक्का बिल बातिल। सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है, हक हक है, बातिल बातिल है, हक को बातिल से मिलाओ नहीं। यहीं पर हम लोग जो हैं, जो मकतब अहले बैत के हैं, हम लोग डिटर्मिनेशन है, मौला हक पर आएँ, बस हक पर आएँ, उनके मुकाबले में जो भी आए बोलिए बातिल है, सीधा बातिल। हम डरते नहीं हैं, खा वो कोई भी हो, खा सहाबी हो या जोजा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। इसके माने नहीं कि हम एहतराम नहीं करते, ना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार अली जिस तरफ मुड़ जाए हक को तू उसी तरफ मोड़ दे। तो मालूम है जहाँ मौला अमीर मोमिनीन होंगे वहाँ पर हक हो। क्यों हक है उधर? बहुत ही खूबसूरत पहली वही नाजिल हुई, फर्स्ट रेवलेशन। एक दर्दनाक चीखने की आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई। वो पहली वही के से लेकर आखिरी वही तक अगर कोई साथ था तो मौला अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। सरकार ने, मौला ने पूछा, मा हादिह रन्ना, अरबी में रन्ना ये रोने के सलीके अलग अलग है, फरियाद का रोना, डर का रोना वगैरह वगैरह। अरबी में एक एक लिए लफ्ज़ भी है। रन्ना के माने मायूसी का रोना। ए सरकार, ये कौन रो रहा है, ये कौन चीख रहा है मायूसी में? सरकार ने वहाँ, या अली अंत तस्मा मा असमा व अंत तरा मा अरा इल्ला लैसा बे नबी, अंत लैसा बे नबी। ए अली, तू वही सुनता है जो मैं सुनता हूँ और वही देखता है जो मैं देखता हूँ। सिर्फ फ़र्क यह है कि तुम नबी नहीं हो, मैं नबी हूँ। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। इससे क्या नतीजा निकाल रहे हैं हम? इससे नतीजा ये निकालना है कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहि अफ़ज़लु सलातु वसलाम इनके दरवाज़े पे जाने के बाद हमको दरबदर जाने की ज़रूरत नहीं होती। हैदर का दर काफ़ी है, दर हैदर काफ़ी है, हमें दरबदर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों काफ़ी है? अदालत के सिलसिले में, ये इज्तिमाई अदालत, सोशल जस्टिस कहते हैं, वो अलग टॉपिक। मैं सोशल जस्टिस पे नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं टॉपिक अलग है। लेकिन देखिए मौला में हफ्त अकलीम, हफ्त अकलीम कहते हैं सेवन हेवंस की हुकूमत मेरे हाथ में दी जाए, यानी सफ सेवन हेवन की पूरी हुकूमत मेरे हाथ में दी जाए और मुझसे कहा जाए चूंटी के मुंह में से नाहक दाना ले लो। अच्छा, चूंटी कितनी, उसका दाना कितना, उस कितना दाना उठा सकती है? उतना दाना मैं नहीं लूँगा, सात अकलीम की हुकूमत ठुकराऊँगा, ये जुल्म नहीं करूँगा। अब यहाँ पर हिस्ट्री को लिखना पड़ता है, कुतला फिल महराब लशिद्दत अदले। अली की शहादत किसने की? मौला की। सीवियरिटी अदालत में, भाई आया तो कहा ना मैं ये बैतुल माल दे नहीं सकता, ये बैतुल माल है, आप तो माशाल्लाह खलीफा हैं। मौला ने वहाँ पर अगेटी जल रही थी, लोहा रगा दिया, एक खोलती एक आग का शोला लाया सामने करीब, के जलाना चाहते हो तुम? ये आग से डर रहे हो? मैं उस आग से डर रहा हूँ, ये है अली। तो मैं कहता हूँ कि ये बच्चे भी अच्छी तरह से समझें, मौलाना ये जो रिलीजन है वेरी ड्राई सब्जेक्ट है, ना डांस, ना कैबरे, ना कुछ, ना कुछ है, ना कुछ, हाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ बहुत ड्राई है। सुन लीजिए अच्छी तरह से, अगर फन चाहते हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मत।

अभी पांच होते नहीं है, है ना। टू प्लस टू इज इक्वल टू नहीं भी, मैं कनाडा में हूँ, आई एम इन मॉडर्न कंट्री, इट इज़ फाइव। कहीं खराब हो गया दिमाग जी। टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर। बॉम्बे में रहे, कराची में रहे, न्यूयॉर्क में रहे, जहाँ भी जाए, टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर कभी फाइव होते नहीं है। हक और हक मिलने के बाद हक ही होता है। कभी सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले। एक फार्मूला बताता हूँ ताकि यदि बातें ज़रा सा अच्छी तरह से उतर जाएंगी तो फिर मेरा मरहला दूसरा जो आ रहा है आसान होता चला जाएगा। आप लोग तो कहते रहते ना प्लस इंटू प्लस प्लस। अच्छा, ये प्लस को लगाइए हक, माइनस कहिए बातिल, ठीक है। प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू, तो हक को हक से मिलाएंगे तो क्या होगा, हक होगा। अब आइए, माइनस है बातिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्या माने बातिल को बातिल से मिलाएंगे तो बातिल ही निकलेगा, कुछ और निकलने वाला नहीं है, ये हो गया बातिल। अब आइए प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी फिर बातिल। हक को बातिल से मिलाएंगे, पहले मिलाओ या बाद में मिलाओ, नतीजा क्या है, माइनस ही है। तो मालूम हुआ हक के साथ बातिल मिल ही नहीं सकता, जिस तरह से रात के साथ दिन नहीं मिल सकती, दिन के साथ रात नहीं मिल सकते, हक के साथ कभी। ला तलबिसुल हक बिल बातिल, कुरान कहता है कभी मिक्सअप मत करो, हक हक है बातिल बातिल। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाला। वाजिल। तीसरे मरहले में आज जो मुझे समझाना है कि कल मैंने छोड़ा था, हिदायत और हवा, हुदा और हवा, और एक लफ्ज़ है तो मेरा नहीं है, कुरानी टर्मिनोलॉजी से कोशिश कीजिए कुरानी इस्तेलाहों को समझें और इसको हज़म करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करें। इस तरह हुदा के माने हिदायत है, उसके मुकाबले में क्या है, हवा, ख्वाहिशात। हिदायत पे अमल नहीं करेंगे तो क्या पे, काहे पे अमल होगा, शायद इस बात, अगर हिदायत पे अमल नहीं हुई तो ख्वाहिशात पर अमल होगा। तो कुरान क्या है, किताबें हिदायत है। अहले बैत कौन है, साहिबान हादी हैं, ये लोग हादी हैं महदी हैं। तो कुरान हादी हैं, अहले बैत हादी हैं, हिदायत चाहते हो इनके पास जाना है। इसके मुकाबल में जो आता है वो क्या है, हवा है। हवा के माने ख्वाहिशात हैं, डिज़ायर्स हैं, नथिंग एल्स। और एक लफ्ज़ लीजिए मेरी तरफ से नहीं, कुरान व अम समूद इस्तहब्बुल अमा अला अलहुदा। अल्लाहु अकबर, कुरान। ये समूद, कौम समूद ने क्या ले लिया, पिक किया किसको, अंधेपन को कबूल कर लिया हिदायत के मुकाबले में। देखिए कितना खूबसूरत है कुरान, एक है हुदा दूसरे है हवा, एक है हुदा दूसरे है अमा। अमा कहते हैं अंधेपन को। तो मालूम हुआ कुरान ये कहता है, कुरानिक पर्सपेक्टिव यह है कि अगर कुरान पे तुम नहीं चलो तो तुम अंधे हो, तुम्हारे पास। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले। और एक आयत ताकि बात को और वाज़े तौर पर, सूरह अनफाल आठवां सूरह है, उसकी 24वीं आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, किससे बात कर रहा अल्लाह, मोमिनीन। तो दो तरह के ग्रुप हैं, एक वो ग्रुप हैं जो नास हैं या अयोहन नास, लोग हैं, जनरल लोग हैं। लेकिन आप लोगों ने पिक किया है एक आइडियालॉजी को, एक फ़िक्र को आपने पिक कर लिया। कौन सी फ़िक्र को अपना लिया है, हाँ बताइए, हिदायत को अपना लिया है, अंधेपन को नहीं अपनाया है। चूँकि हिदायत को अपनाया है, ख्वाहिशात को नहीं अपनाया है, तो आप कौन हो गए, मोमिनीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनीन, इसलिए कि आपने कबूल कर लिया, लब्बैक कहा। यह लब्बैक हुसैन या हुसैन क्या है, लब्बैक या हुसैन, यानी लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये लब्बैक के माने यह हैं कि आई एम रेडी। इसीलिए हमारे पास अखलाक तिलावत कुरान में है कि मासूम फरमाते हैं कि वुदू करो, कुरान के साथ बैठो, अब अल्लाह तुमसे बात कर रहा है, होशियार रहो, ये मामूली चीज़ नहीं है। उसके बाद जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए तो फौरन कहो लब्बैक।

अल्लाहुम्मा लब्बैक है ना, आई एम रेडी टू लिसन। मालिक क्या कहना चाह रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, अल्लाह और रसूल के काल का जवाब दो ताकि तुमको ज़िंदगी मिले। तुम ये समझते हो तुम्हारी ज़िंदगी है, इस्लाम की निगाह में तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है। मिसाल देता हूँ आपको, ये जो आप आजकल विजुलाइज़ कर दिया गया है, जैसे नेशनल ज्योग्राफी ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत से हैवानात के सिलसिले में डिटेल दिए गए, हमारे पास ये पहले से मौजूद था मगर हमने ये काम नहीं किया, गैर ने कर लिया। इल्मुल हैवान हमारे पास बहुत बड़ा चैप्टर है, जो हमारे पास हत्ता बिहारुल अनवार में भी एक चैप्टर है जिसमें हैवानों की कैफियत को बताया किस तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने विजुअलाइज कर दिया। चूहा देखिए, चूहा कैसे ज़िंदगी बसर करता है मालूम आपको, लग्जरी ज़िंदगी। हम समझते बिल है, अंदर जाइए चूहे के बिल में कहाँ ग़िज़ा रखना है वो रखता है, तो ऐसी जगह रखता है ग़िज़ा ख़राब ना हो, इसके माने फ्रिज है उसका, और बेडरूम है उसका, बाकायदा बेडरूम है उसका, और ये जो अपना वेस्ट करता है गंदगी करता है उसके लिए भी वॉशरूम है वो बिल के अंदर, दुनिया पूरी दुनिया है। और उतना होशियार है कि इस तरफ से बिल तो एक तरफ है, दूसरी तरफ जाता ज़मीन के एक इंच तक वो खोद के तैयार रखता है एग्ज़िट डोर, अगर कोई हमला इधर से हुआ उधर से निकल जाता है। चूहा इतना होशियार है कि वो अपना बेडरूम बना लेता है, वो अपना एग्ज़िट डोर बना लेता है। हमने अगर ऐसा कर लिया तो कोई बड़ा कमाल नहीं किया, चूहे से बड़ी ज़िंदगी हमने बसर नहीं की। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, अल्लाह के काल को लब्बैक कहो, रसूल के काल को लब्बैक कहो ताकि तुम्हें ज़िंदगी मिले। तुम समझ रहे हो ज़िंदगी है ना, तुम्हारा खाना पीना ज़िंदगी नहीं है जब तक कि वहाँ ना पहुँच जाओ। सलावात पढ़िए मोहम्मद। मुश्किल में डाल रहा हूँ मैं, नहीं सीधी सीधी सिंपल बात है, लेकिन मैं आपको जब कह रहा हूँ मैं ख़ुद अपने महसूस करता हूँ व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव, कितनी तकलीफ देह है कि ये दुनिया जो है आसान दुनिया नहीं है, इसको बड़ा अच्छी तरह से इसका दर्क करना है, प्रस्पेक्टिव्स को हमारे इदराकात को शऊर को दुरुस्त कर लेना। जैसे ही हमने दुरुस्त को ये हमारे प्रस्पेक्टिव को ले लिया, यहाँ पर आप जे पैलेस में आए माने क्या है, यहाँ पर दीन मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, दीन मिलेगा। और ये भी जुमला याद रख लीजिए, दीन ही दीन दे सकता है, बेदीन दीन नहीं दे सकता। जो दीन रखता है वही दीन सक दे सकता है। आप यहाँ की ये जवान बच्चों की मखसूस गुफ्तगू है कि जो जैसा इनपुट होगा, बोलिए, आउटपुट भी वैसे होगा। तो इनपुट को दुरुस्त कर लीजिए, तो इस्लाम को दुरुस्त कर लीजिए, हमारा आउटपुट भी हमारा अमल भी दुरुस्त होता चलेगा। अगर हमने ये इनपुट में गड़बड़ की तो आउटपुट भी हमारा गड़बड़ में रहेगा। इसीलिए कुरान कहता है बी केयरफुल, अलम यरल्लज़ी, कुरान कहता क्या तुम नहीं जानते कि वो मुर्दा था, फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी फिल अर्द, वो मुर्दा था लेकिन हमने उसको ज़िंदगी दी। कौन सी ज़िंदगी, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिम, सलावात पढ़िए मोहम्मद वाला मोहम्मद। ये ज़िंदगी मिल गई है, अब ज़िंदगी मिलने के बाद उसके बाद क्या है, न सिर्फ ज़िंदगी दी एक टॉर्च भी दिया कि चलते हुए वो टॉर्च लेके चल रहा है, और टॉर्च के ज़रिए से उसको भटकना नहीं है क्योंकि उसके साथ टॉर्च है, अंधेरे में जा रहा है तो उसके साथ टॉर्च है, वो डरता नहीं है, बिल्कुल परेशान होता नहीं है, सही रास्ते पर चलता चला जा रहा है। ये टॉर्च क्या है, वो ईमान है उसका, और ये नहीं कहता कि लोग क्या कर रहे हैं, नहीं भी कुरान क्या कह रहा है, अहले बैत क्या कर रहे हैं, मौलाना दुनिया में ये हो रहा है, ना दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, कुरान क्या कह रहा है, अहले बैत क्या कह रहे हैं। एक जुमला सुन लीजिए, वो जुमला ये है, इमाम ज़माना अज्जल अल्लाह तआला फ़रजहु शरीफ।

शायरा का अशायरा कहते हैं कि वो मजबूर इंसान है, एक रोबोट बनाया गया है, यहाँ आया है तो उसको यजीद जैसों को बचाने के लिए कॉन्सेप्ट है कि यजीद भी अपना नहीं किया, उसको प्रोग्राम बनाया गया था, वो जैसे अल्लाह ने प्रोग्राम बनाया था वैसा काम करके चला गया। इस्लाम का धन्ना तुम मुख्तार हो, अगर मुख्तार नहीं है तो जन्नत क्या माने, अगर मुख्तार नहीं है तो जहन्नम क्या माने, अगर रोबोट बना के भेजा तो फिर जहन्नम में चले जाऊंगा तो पूछूंगा रोज़े क़यामत परवरदिगार तूने बना के भेजा था फिर जहन्नम में डाल दिया। सवाल आपका सवाल सही है, इसीलिए कुरान ने कहना चुनाचे एक बदवीन अरब हैं, बदवीन अरब यानी ऊँटें चराने वाला बाहर डेजर्ट में सरकार की मज़ में आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लंबी लिस्ट मुझे नहीं होती, कोई एक छोटी चीज़ बताओ ताकि मैं अमल कर सकूं। ये तो आप लोग तो माशाल्लाह ये बोलते हैं वो, ये नहीं लंबा नहीं होना चाहिए, मुझे एक छोटी चीज़ बता दीजिए मैं उस पर अमल करूँगा। सरकार ने कहा वमैयामल मिथकाल दर्रतिन खैरन यरा वमैयामल मिथकाल दर्रतिन शर्रन यरा, जो आटम बराबर नेकी करेगा वो देखेगा, आटम बराबर जो बुराई करेगा उसको देखना पड़ेगा। ये कहते इसने कहा बस दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, ख़त्म, भाग गया। ये जो सहाबा थे बगले झाँक रहे थे, ये हम 15 साल से साथ हैं यार, हमको इनफ नहीं हुआ, इसको एक जुमला या इनफ कैसे हो गया। रसूलुल्लाह ने कहा रजा फ़कीहन, आया था जाहिल गया मुश्तहिद, इसलिए कि उसने कॉन्सेप्ट को पूरे कुरान के कॉन्सेप्ट को एक आयत में समझ लिया कि हकीकत में जो कुछ है मैं अंडर द सर्वेलेंस हूँ, वो सर्वेलेंस कैमरा अल्लाह का है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। नारे याली क्या होगा, नारे हैदरी या बीच में अटक के रह गए आप। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह। लोग ये बोलेंगे मौलाना ट्रेन करके बिठाए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। एक वाक़ है, उसके बाद टाइम ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ही रिलेटेड वाक़ है। एक शख्स को सजा दी जा रही थी, क्या है उसने शराब पिया, क्या गड़बड़ की, वो बेचारा चीख रहा था मुझे नहीं मालूम था भाई कानून, मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। तो चनाचे मौला के सामने केस आया, मौला ने कहा ना वो सही कह रहा, पहले मालूम करो किस देहात का है ये, तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से समझी, किस देहात का है मालूम करो, फलां देहात का है। पूरे असहाब से पूछो कोई गया था वहाँ मुबल्लिग, वहाँ पयाम पहुँचाया कि नहीं कुरान की आयत के शराब पीने वाले के लिए कोड़े हैं, 80 कोड़े हैं, सुना था कि नहीं, मालूम हुआ कि नहीं है। तो जब उसको मालूम ही नहीं है सज़ा क्यों दे रहे हैं। देखिए अदालत को उस लेवल पर समझना, लौ कुसरत लियल वसाद ثم جلست عليها لقضيت بين اهل التوراة بتوراتهم وبين اهل الانجيل بانجيلهم وبين اهل القران بقرانهم, मेरे लिए अगर अदालत के चेयर पे बिठाया जाता तो मैं तौरात वालों को तौरात से, ज़बूर वालों को ज़बूर से, इंजील वालों को इंजील से, कुरान वालों को डेमोक्रेटिक सिस्टम को अली ने समझा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बड़ी अदालत क्या हो सकती है। इंसान इस मकाम पर पहुंच कर ये कह रहा है मौला फरमा अगर मुझे मौका दिया जाता तो ये 25 साल का दौर जो है इतना ख़तरनाक दौर है कि जिसमें अली जैसा फातह खैबर मज़लूम रहा, इमाम हुसैन के लिए मज़लूम की लफ्ज़ नहीं है। मैंने कल बताया था ज़ियारत को जाइए तो हर इमाम की ज़ियारत के कुछ टुकड़े हैं उनको लीजिए, पिक कीजिए उनको। इमाम मौला कायनात की ज़ियारत के टुकड़ा जो है ये होना चाहिए तो इमाम हुसैन के लिए नहीं है,
السلام علیکم.

या असबर साबरीन, ऐ सबसे ज्यादा सब्र करने वाले हमारा सलाम तुझे। वो कौन सी चीज है जिस पे अली सब्र कर रहा है? जहालत फैली हुई है, फैलाया जा रहा है, हक को लूटा जा रहा है। चुनांचे मालूम हुआ है कि मुसलमान फौजों ने, तवज्जो तवज्जो, तो अल्लाहु अकबर, अदालत की किस मंजिल पर है अदल, मुसलमान फौजों ने यहूदी लड़की

0: बहुत शुक्रिया। क्या वक्त हो रहा है, जब्त कर पाई तुम?
1: नाचारी की क्या दवा, रोजे की मन्नत मांगी है नायला के लिए।
0: नायला, अल्लाह की पनाह नायला से। अगर तुमने घोड़े की सवारी की मश्क की होगी तो तुम जानती होगी कि जब घोड़ा अपने सवार को जमीन पर गिरा दे तो सवार के दिल से खौफ दूर करने का बस एक ही तरीका है कि वक्त जाया किए बगैर दोबारा उसे घोड़े पर सवार कर दिया जाए। नायला का हल सिर्फ शादी है, ताकि घर के कोने में बैठ जाए।
1: तो उस खत में मेरी बेटी की शादी की बात की गई थी, जो आपकी नींद उड़ गई, बताइए मुझे।

0: कैसा खत?
1: कैसा खत? वही खत जो कल से आपके हाथ में है।
0: वो शाम से खत तो था, लेकिन उसमें नायला की शादी की कोई बात नहीं थी।
1: तो फिर क्यों इतना परेशान है?
0: तुम्हें नहीं पता, ये सब सियासी चालाकियां हैं। अगर हमने खत के जरिए अपनी अपनी भाईचारगी यजीद से साबित कर दी तो ठीक, नहीं तो समझ लो कि ये तिजारत खाना बगैर तिजारत की है।
1: लानत हो उस पर कि आजकल उसका खत हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। काश ऐसा काम करो कि इनका मुंह बंद हो जाए।
0: क्या करूं? नहीं पता कौन सही है और कौन गलत, ये सब मेरी समझ से दूर है। तुम्हारी जान की कसम नहीं समझ पा रहा हूँ।
1: एक पूरे कबीले की निगाहें आपकी तरफ हैं। सियासत के हारों की आखिरी पनाहगाह आप हैं। बड़े लोग बड़ी मुसीबतों से नहीं घबराते। आप जो भी करेंगे यकीनन उसमें भलाई होगी।
0: नहीं पता, शायद सही कह रही हो, शायद ऐसा ही हो।
2: खुदा की कसम अफसोस है कि तमाम कुफा वालों का नाम हो लेकिन तुम्हारा नाम। हर एक नाम एक उम्मीद की रोशनी है इमाम के लिए।
3: सहराओं में कहीं भूखे ना रह जाओ। कितना खाना लिया है आपने? कहीं ये खाना कम ना पड़ जाए आपको। सुन रहे हैं आप
4: वासित के प्यारे, खत को इमाम के घर तक थोड़ी लेके जाऊंगा। नामा भर तक पहुंचने में एक दो हफ्ते से ज्यादा वक्त थोड़ी लगेगा। जितनी खुराक रखी है वो मेरे लिए काफी है।
5: बहुत हुआ बेटी, ये बच्चा नहीं है जो अपने बुरे भले को ना जानता हो। उसका काम करने दो, काफी है।
3: रास्ता जानने वाला कोई दूसरा नहीं मिला जो खत इनके हवाले कर दिया?
2: या अल्लाह, बेटा तुम्हें किसने मजबूर किया ताकि ये काम करो?
4: नहीं, मजबूर क्यों, मेरी ही ख्वाहिश थी।
2: खुदा तुम्हारी मदद करे, इसका बोझ भी कम नहीं है याद रखना, लेकिन इसके होते हुए गमों गुस्से के बोझ की जरूरत नहीं है।
3: आराम से जाना, मुझ पर इससे ज्यादा सख्ती मत करना।
5: तुम्हारी इस तलखी को तुम्हारे इस हाल पे छोड़ दूंगी, लेकिन अब बहुत हुआ, बहुत हुआ, बस करो। कल आले रसूल अल्लाह को क्या जवाब दूंगी?

0: इधर देखो आया मैं आया हूँ। बाखुदा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्यों इतना परेशान हो।
1: लंबे सफर की बात नहीं, अगर उस खत को तुम्हारे सामान में पा गए तो तुम्हारा काम तमाम है। खतरा बयाबानों और वादियों में नहीं है, यहीं पर है, मेरे कानों के नजदीक कूफे के दरवाजे पर है।
0: आहिया, तुम्हें अपना ईमान नहीं खोना चाहिए। तुम खुद जानती हो कि अगर जिंदा ही रह जाना होगा तो शायद मौत के मुंह से भी वापस आ सकता हूँ, और अगर मरना ही होगा तो नरम बिस्तर और कूफे के दरवाजे के बीच मर जाने में कोई फर्क नहीं है।
1: मेरा दिल बहुत कमजोर हो गया, मेरी ऐसी हालत नहीं है कि तन्हा रह सकूं। आज ये कलिया बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो तुम्हारे बिना क्या करूंगी।
0: अपने सब्र का सवाब कम मत करो, उसके दुनिया में आने से पहले वापस आ जाऊंगा, और अगर तुम्हारा दिल राजी नहीं है तो अभी बता दो। वो राजी नहीं है कि मैं जबरन जाऊं।
1: अच्छी तरह सुनो, जब भी कभी तुम पर कोई सख्त और खतरनाक वक्त आ जाए, जान लो उसे अंजाम देने से पहले मुझे और होने वाले बच्चे के बारे में जरूर सोच लेना, फिर काम अंजाम देना। समझ गए?
2: खुदा की पनाह में। बासित, अपना ख्याल रखना, सिर्फ तुम्हें खतरा नहीं है बल्कि हर वो शख्स जिसका नाम उस खत में है, वो सब, उनका कबीला और खानदान खतरे में है। अगर इनका निशान भी उनको पता चल जाए तो मुसीबत है।
3: नक्शा वही है जिसे हम देख चुके हैं, तन्हा खतरनाक जगह दरवाजा।

0: ताजा है। लोग ख्याल रख रहे हैं कि तुम सलामती से वहाँ से गुजर जाओ। परेशान मत हो,
1: अपने चेहरे पर कोई खौफ जाहिर ना होने दो। कवि और मोहकम रहो हमेशा की।
0: मेरी दोनों आंखें तुम्हारी तरफ हैं। परेशान मत हो।
2: भाई की जान,
3: कुरान मजीद का साया तुम्हारे सर पर हो और तुम्हारी सलामती और आकेबत बखैरी का जामिन हो। तुम्हें खुदा के हवाले करती हूँ, खुदा की जमानत में हो।

0: लो लो, सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है। लो पानी पी लो।
1: सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: अगर आपके लिए मुश्किल नहीं है तो कुछ कदम चलें और कुछ बातें करते हैं।
0: सब ठीक तो है?
1: जी ठीक है
0: इंशाल्लाह। थोड़ा इंतजार करवाता हूँ।

0: नईम जरूरत से ज्यादा तल्ख मिजाज है। तुम भी एक दिन की दुल्हन तो नहीं हो, उसकी आदतों को अच्छी तरह जानती हो। आज मारेगा और चिल्लाएगा और दूसरे दिन सुबह उठेगा, तुम्हारे पांव पड़ेगा और मोहब्बत दिखाएगा।
1: उसका गुस्सा हद से ज्यादा हो गया है बाबा। मेरे बच्चों की आंखों के सामने मेरे माँ बाप को बुरा भला कहता है वो, और तमाचा मारता है। तलमा के अंदर जो भी ताकत थी वो अब नहीं बची।
0: इन दिनों मैंने उस पे बहुत सख्तियाँ की हैं। थोड़ा वक्त दो, नए दिलो दिमाग के साथ परवान चढ़ने दो।
1: एक दरख्वास्त और इल्तिजा लेकर आई कि जरात खाने को नईम से ले लें और उसे इस काम से छुटकारा दें, कि उसे एक अच्छा हरीफ बनने का हुनर आ जाए और माल को इंसाफ के साथ लोगों में तकसीम कर सके।
0: वालेकुम अस्सलाम। बड़ी अजीब आरज़ू लेकर आई हो तलमा।
1: इस तिजारत खाने को किसी और के हाथ देना सख्त काम नहीं है। हिलाल के हवाले कर दे, औरतों के हवाले कर दे, नईम के अलावा किसी को भी दे दे।
0: नईम की जिल्लत तुम्हारी जिल्लत है। तुम मियां बीबी कब से इस तरह हो गए हो तलमा?
1: जब से मेरे सीने में जनाब औहद के हजार राज समा गए हैं, वही राज के अगर तलमा अपना मुंह खोल दे, वही अगर

0: कौन सा राज है जिससे मैं बेखबर हूँ?
1: कोई अहम चीज नहीं है। बाप ने बेटी को इख्तियार दे रखा है कि जो कभी भाई के बेटे को चाहने लगती है तो

0: कभी माविया के बेटे को, वो गूंगा हो जाए जो मुंह खोले। बाबा जान, मैं इस खानदान की दुल्हन, ना ही अजियत देने का इरादा है ना ही नाफरमानी का। हर खानदान में हजार बलाएं आती हैं और बुजुर्गों की होशियारी से दूर हो जाती है। आज आपकी होशियारी का वक्त है। मैंने तो खबरचीनी करने वालों का मुंह बंद कर दिया है, लेकिन मैं नहीं जानती कि अगर नायला को पता चल जाए कि उसका बाप भी यजीद से उसका मामला तय कर चुका है, या नर्म दिल वाले बाप, सोचिए अगर ये बात उसे पता चली तो क्या होगा। देख रहे हो बाबा, देख रहे हो कैसे आग भड़क सकती है।
1: अपनी आखिरी बात को पहले बोलो।
0: मेरे और नईम के बीच जो बुलंद मकाम के काबिल है वो मैं हूँ, जिसकी जुबान तेज और सियासत को समझती है वो मैं हूँ, और जिसका यजीद से कोई रिश्ता है वो मैं हूँ।
1: तो
0: तिजारत खाने को नईम से ले ले और तलवा के हवाले कर दे। मैं भी अपना मुंह बंद कर लूँ कि ऐसे की कुछ हुआ ही ना हो।
1: आज तुमने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। ये बात अपने कान में बिठा लो तलमा, औहद किसी को खातिर में नहीं लाता। औरत को शहरत और तिजारत खाने से क्या लेना। लोगों तुम्हारी गलतफहमी दूर करता हूं, तिजारत खाने को कुत्ते के हवाले कर दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम वो ढोल हो जिसमें कोई आवाज नहीं। जितना चाहो फरियाद करो, जो मन करता है वो करो। जिस रास्ते पर जा रही हो वो जन्नत तक नहीं जाता, और इसका अंजाम बुरा है, बुरा।

0: चाहिए, वो जिंदा रहना चाहिए, मुझे जिंदा चाहिए वो।
1: नाम का पता लगा के रहूंगा, और मुझे यह शख्स भी चाहिए, वो खत इसमें है।

0: बहुत अच्छा काम किया।
1: जिंदा है सरदार।
0: अच्छा लगा तुम्हारा काम। इसका ख्याल रहे।
1: जी सरदार।
0: तो घेर लो।

बस करो। बहुत ही सख्त हफ्ता गुजरा, इतना सख्त जैसे सवा नेजे पर सूरज। गमो गुस्सा बहुत हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपनों की नाखुशी को देखूं। उठाओ और देखो तुम्हें पसंद है या नहीं। नया वित्र और कपड़े और सेवर, ये तीनों औरत को खुशहाल करते हैं। तुम्हारी खुशी घर को गर्म और रोशन करती है। हंसो बेटी, हंसो हंसो।

0: लीजिए।
1: उठो और पहनो।
0: बलाएं दूर हों, बहुत खूबसूरत है।
1: बैठो।
0: आपने जब हमें यहाँ आने का हुक्म दिया तो मैंने गुमान किया कि तिजारत खाने के कारोबार में कोई मुश्किल पेश आई है। मुझे सोग के बाद ऐसी शादी की उम्मीद नहीं थी।
1: आज के बाद इस घर में मुश्किल कम और खुशी ज्यादा होगी।
2: कारोबार में मुश्किल पेश आने की आपकी क्या मुराद है? कुछ हुआ है क्या जिसकी मुझे खबर नहीं है?
0: नहीं मालूम। मैंने गुमान किया कि नईम को तिजारत खाने से हटाना खुद एक बड़ा मसला था, या मेरे तिजारत खाने को संभालना आप सब लोगों के लिए इतना बड़ा मसला बन गया।
1: नईम मर्द है, इसकी पूरी उम्र उस काम की तरबियत में गुजरी है। इसके अजदाद इसका पूरा हसब और नसब ताजिर था। तुम परेशान मत हो दुल्हन, जब तक मैं हूं तब तक नईम के दुश्मन के हाथ खुशी नहीं लगेगी।
0: नायला के कारवां का माजरा उसकी बरखिलाफ साबित हुआ है।
1: तुम्हारी माँ ने तुम्हारे डर और परेशानी के बारे में बताया। अगर हमेशा साथ रहने वाले करीजों से भी तुम्हें सुकून नहीं मिलता है तो क्या हिलाल को वापस बुला लूं? जबकि मैंने उसको बेवजह मासूल किया, लेकिन अगर तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है तो मुश्किल नहीं है।

0: अच्छा हुआ तुम आ गई। शायद तुमसे ही बात करके मेरा दिल हल्का होगा।
1: कुछ हुआ है क्या?
0: तुम मेरे इस वजनी बदन पे मत जाओ। मेरा दिल बहुत छोटा है और किसी राज को छुपाने की ताकत भी नहीं है। कुछ बात करनी थी, जब तक कोई नहीं है तमाम बात कह देती हूँ।
1: खैर हो आपकी, बोलिए।
0: इस कमरे की हालत देखो। इस कमरे में रहने वाले हिलाल अमन और आराम बख्श है।
1: खुदा उसकी हिफाजत करे।
0: मेरी माँ को बहुत जल्दी है कि इस घर में एक दुल्हन आए और इस घर के लिए शामिन से अच्छी और कौन हो सकती है मेरे लिए।
1: तुम क्या मजाक कर रही हो आया? तुमने अभी अभी मेरा हाथ मांगा?
0: मुझे माफ कर दो कि मैंने बिना किसी तमहीद के इस माजरे को बता दिया। तुम्हारे बाबा से हाथ मांगने से पहले खुशी देखना चाहती थी।
1: तुम्हारे घर वाले हमेशा से काबिले एहतराम थे और हैं।
0: मुझे पता है कि तुम्हारे बाबा हिलाल से बिल्कुल खुश नहीं है। ना फकत इस बल्कि हर मुहिब अहले बैत से वो नाराज है।
1: नहीं, मेरी और मेरे बाबा की नजरें एक जैसी नहीं हैं।
0: तो फिर इस तदबीर सोचूंगी कि कबूल है कहने से पहले खूब अच्छी तरह से देख सकूं, यहाँ तक कि बाद में बहाना ना बना सको तुम।

0: काश आप होते तो अपनी आंखों से अमर बिन हुरैज का चेहरा देखते, जैसे आसमानी बिजली ने उसके चेहरे को खाक कर दिया हो।
1: और खत का क्या हुआ? खत मिला?
0: खत तो मिल गया, लेकिन चूंकि रंग वाली देग में उस खत को फेंक दिया था, इसलिए नाम पढ़ने के काबिल नहीं रहे। उसने कहा कि बाबा को सलाम कहो और कहो कि हमेशा होशियार रहे।
1: नामा पर को बगैर खत के पकड़ने का क्या फायदा?
0: बेफायदा भी नहीं रहेगा। जहां तक मैं जानता हूँ, पूरा कूफा अली के बेटे की दावत के लिए बेसब्री से खत लिख रहा है।
1: हर खत के बीच उनके सरबराहों की मोहर भी है, लेकिन अम्र की उस बेहूदगी की वजह से उससे भी हाथ धो बैठे।
0: खत लाने वाला सामिया का दामाद था।
1: कौन?
0: बासित जिंदा है। अम्र अगर हुरैज का बेटा होगा तो तमाम बदबख्तों का नाम उसकी जबान से निकलवा कर रहेगा।
2: हिनास, हिनास, हिनास, हिनास।
3: क्या हुआ आद?
1: मेरी अजीज, नायला को तनहा मत छोड़ो।
3: तनहा नहीं, तलमा उसके पास है।
1: मेरा मतलब तुम्हारी खुद उस पर नजर रहे।

0: जनाब शर्मिंदा हूँ, हमारे साथ चलिए, तिजारत खाने में हमला हुआ है।
1: लानत हो शैतान पर, हमारे होते हुए ये क्या हुआ? आया बेटी, गम मत करो, इंशाअल्लाह बासित की रिहाई का रास्ता निकालेंगे। अपने दिल को खुश रखो कि तुम्हारे शौहर की शुजाअत, अलबत्ता तुम्हारे भाई की भी शुजाअत कि तमाम शियों की जबान पर चर्चा हो रही है।
2: खुदा अम्र बिन नुहरैस की नस्ल को खत्म कर दे कि बहुत ही बेवक्त पहुंचा।
3: मुझे उसकी जान जाने का खतरा है, उन्होंने कूफे के बुजुर्ग और बच्चों के सामने उस पर रहम नहीं किया। कैद खाने में लोगों की नजरों से दूर क्या सितम ढाएंगे?
4: आप लोगों को क्या हो रहा है? डर को अपने दिल में जगह ना दें, इसका उस खुदा पे छोड़ दें। नुमान बहुत मोहतात है, वो एक शिया के कत्ल का हुक्म देने में तामुल करेगा जिसका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है।
1: बहुत खूब, ऐसा ही है। अगर हम अपनी आवाज उठाएं तो इन बुजदिलों का डर जाहिर हो जाएगा, लेकिन अफसोस है कि अलवी अब ना फरियाद कर सकते हैं और ना ही खुलकर एतराज कर सकते हैं, वरना वो खुद जानते हैं कि हम उनके नीचे दबी हुई एक आग हैं कि एक रोज हम उन्हें जला कर राख कर देंगे।
2: आज मेरी नजर सिर्फ उस पर जमी थी, खुदा की कसम उनको इस माजरे की खबर थी। इब्ने हरीस पहुंचते ही सीधा बासित के पास चला गया, हिलाल ने भी देखा।
5: तुमने तो तीर मारा, ऐसे मारते के वहीं पर ढेर हो जाता।
6: ऐसी बातें करो कि अक्ल के मुआफिक।
4: हिलाल,
6: इब्ने हरीस की जान लेता तो इसका बदला इस घर के दामाद की जान थी, और इसी तरह तुम सब की जान जिनका नाम उस खत में लिखा हुआ था।
1: आज की सुबह क्या सोच रहे थे और क्या हो गया?
4: आपके इसी ख्वाबो ख्याल ने मेरे शौहर की जान को खेल बना दिया।
7: हमारे दरमियान कोई ऐसा ना आशना है जो तुम्हारे दामाद के बारे में मुखबिरी कर सके? क्या तुम्हें हिलाल पर पूरा भरोसा है?

0: ये मेरे शौहर का खून बहा, मेरी औलाद पर हर माल से ज्यादा हलाल है। तुम तो हलाल और हराम और हक और नाहक को अच्छी तरह जानते हो। मेरा इतना मुंह खोलने से पहले मेरा हक क्यों नहीं दे रहे थे?
1: मेरे इख्तियार में नहीं था कि...
2: बेवजह बातों को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, रहने दो, इससे अभी हमें बहुत काम है।
3: ठीक है,
2: वादा किया है कि अपना हक ले और अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर दे।
0: मैं कूफा से आशना नहीं हूं, उस मर्द के कब्र के अलावा जो मेरे लिए बनाई। मेरा खानदान और घर शाम में है, किसी कारवां के हवाले कर दे जो मुझे शाम पहुंचा दे, और मेरे रास्ते का खर्चा भी मिल जाए तो अच्छा है।
2: बोरे से गिरा खराब अनाज जितना दूर हो अच्छा है।
4: चलो
2: जरा ठहरो, तुम्हारे जाने से पहले

0: मैं भी देखूं जरा मेहंदी से क्या बनाया हाथों पे। मुबारक हो, दिखाओ मुझे, क्या बात है, देखो मैं।
1: अरे वाह, मेहंदी लाल हो गई, देखो ये अच्छी लगी है ना?
2: नहीं तो दोनों की एक जैसी है।
0: बहुत अच्छी है। हाँ
1: दादी जान, अभी दादा जान और बाबा जान तो नहीं है जो हमें डांटेंगे, क्या हम दादा जान की तलवार को देखने जा सकते हैं?
2: आपको खुदा का वास्ता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम लोगों को पता नहीं कि तुम्हारे दादा जान को पसंद नहीं है कि उनके सामान को कोई हाथ लगाए, खुश हुसन उनकी तलवार को?
1: आपको खुदा का वास्ता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए।
0: तो सिर्फ एक लम्हा और एक निगाह के लिए, और सामान को हाथ मत लगाना, ठीक है?
1: ठीक है, वादा।
0: ठीक है, आज की रात तुम्हारे नाम, तुम दोनों के दिल की मुराद पूरी हो जाएगी, ठीक है? चलो।
3: ऐसा वक्त बहुत कम ही पेश आता है कि सिर्फ हम दोनों हो और कोई ना हो। मेरे गले में एक ऐसा राज फंसा हुआ है कि अगर अपनी जुबान ना खोलूं तो मर जाऊंगी।
4: खुदा की पनाह, कहो।
3: नहीं कह सकती, मुझे किसी पे भरोसा नहीं।
5: ए लड़की, 10 लुकमा रोटी और शहद लेकर आओ।
1: मैं? ऐसे तो आप अकेली हो जाएंगी। जनाब औहद ने कहा है कि आपसे जर्रा भर भी दूर ना हटूं।
5: मुझे दोबारा ना कहना पड़े।
1: जी।
3: ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है, कोई पीछे से आकर खंजर ना खोप दे। काश उस रात मैं गूंगी हो जाती और तुम्हारी शाम के सफर का माजरा ना बताती। मुझे क्या पता था कि खून उनकी आंखों पर पट्टी बन जाए और अपने को गैरों से जुदा नहीं कर पाएंगे। नायला, हमारा जोर कहां और तकदीर का खेल कहां? अंजाम वही होगा जो होना है। क्या पता, शायद अगर उस रोज यजीद की दुल्हन बन जाती तो शायद ये दिन मुझे हरगिज़ ना देखना पड़ता।
5: साफ साफ बताओ मुझे, इस तरह इशारों से तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है।
3: तुम्हें क्या लगता है कि रागिब ने अकेले ही यजीद से तुम्हारी शादी की साजिश रची थी? नहीं, इन सब का फैसला लेने वाला औहद था। सब कुछ रागिब बेचारे ने अपनी गर्दन पर ले लिया ताकि औहद की आबरू रेजी ना हो।
5: बहकी बातें मत करो।
3: तुम्हारे बाबा की इज्जत यजीद के दरबार में सौदा थी, जिसकी कीमत तुम थी प्यारी।
5: क्या मतलब है इसका?
3: मतलब ये कि अपनी आंखों को सही से खोल लो और अच्छी तरह से देखो कि कैसे कल माविया का दस्त बोसा और आज यजीद का दुश्मन कुदरत की मसनद पर बैठा है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। तुम्हें अपने बाप का चेहरा याद है? जब उसने रागिब की बेगैरती की खबर सुनी तो उसके चेहरे पे ताज्जुब देखा था। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ताज्जुब बेखबरी की निशानी है नायला। मैं औहद को भी जानती हूं और तुमको भी। अगर वो बेखबर होता और उस खबर को तुमसे सुनता तो रागिब के जनाजे को आग में जला देता, ना कि उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ता। तुमने खुद से सवाल नहीं किया कि कैसे नईम रागिब के घर को तबाह कर रहा है, लेकिन तुम्हारा बाप तंबीह करने के बजाय उसे अपनी मसनद पर बैठाता है। इन जख्मों को देखो, ये

0: तुमसे मेहरबानी का सिला है। मुझ में तुम्हारी हालत देखने की ताब नहीं थी। नायला, मैं तुम्हारी जगह नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं खुद अपनी जान का फैसला करती। अगर चेस का नतीजा मौत ही होती, ऐसे बाप के दस्तरखान पे बैठना कि जो खरीदता बेचता है और मार देता है, बिल्कुल आसान काम नहीं है।
1: मैं तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर लूं?
0: हकीकत तलख है मेरी प्यारी, लेकिन इस बात को मत भूलो कि अव्वल और आखिर तुम एक कनीज की ही बेटी हो।

0: Hina! Hina!
1: खत में दस्तखत करने वालों के नाम बताओ और जाओ।
2: मरने के डर से तुमने अपनी जबान तो नहीं खोल दी, बताओ मुझे।
1: अगर ये हुसैन का हुक्म है तो इन बदबख्तों की जबान से एक एक नाम उगलवा लूंगा।
3: मेरे दिल का शिकार कर लिया और बेखबर।
4: तुम्हें ऐसा क्या मिल गया जो तुमने मुझ पर शक किया?
2: तुम्हें कहना है कहो, मगर अली के दुश्मन के साथ हम प्याला होना जुल्म है।
5: इब्ने हुरैस के जिंदान को मजाक समझ रखा है।
3: मैं ऐसे दर्द के साथ जिसने मेरी हड्डियों को तोड़ दिया और जिगर में आग लगा दी जिंदा नहीं रह सकती हूँ।
1: सारे बल्बे के पीछे
6: वालेकुम अस्सलाम।
7: शहादत इस घर वालों के लिए नाश्ता नहीं है।
8: सलमा ने अपना मुंह खोल दिया और सब कुछ बोल दिया।
4: ये जो इल्जाम इस बार मेरे ऊपर लगाया गया ये मेरा नहीं तुम्हारा काम है।
7: जब मुसलमानों की नामोस तुम्हारी पनाह में आई है तो तुम ऐसा कर रहे हो।
9: Every child deserves a place where they feel safe, secure, valued, inspired, and loved. Welcome to Al Muntasir Islamic International School, where learning begins with care, confidence, and compassion. Give your child a place to belong, learn, and flourish. Admissions are now open at Al Muntasir Islamic International School. Come and discover a nurturing environment where every child matters. We are committed to excellence enriched by faith.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: Amir, पूरी झाड़ियां जाल से भरपूर हैं। 10 लश्कर भी उनसे लड़ने के लिए भेजेंगे तो बेकार होगा। जब तक ये लोग झाड़ियों में हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
2: शबस कहाँ है?
1: शबस भी मेरे अक्सर आदमियों की तरह नादी बुटे के जाल में फंस गया है। अलबत्ता मैंने उसे खतरे का बताया था। जाहिरन बसरा हुकूमत की मस्ती ने उसे बहरा बना दिया था।
2: किनायाबाजी मत करो इब्ने हुर। शबस कहाँ है?
1: मैंने अभी अर्ज किया, नादी और उसके साथियों का शिकार बन गया।
2: मर गया?
1: अफसोस के साथ। हाँ,
2: बताइए जनाब अकले कुल, मुख्तार का नया मौजजा झाड़ियां थी जिससे तुम सब गाफिल थे। तुम लोग कैसे नहीं समझे कि झाड़ियां जाल से भरपूर थी?
3: क्योंकि मेरा मानना यह था कि मुख्तार छुपकर हमला नहीं करता।
2: लगता है इस खबीज कज़्ज़ाब को बखूबी नहीं पहचाना है हमने। आज के लिए इतना ही काफी है, जंग रोकने का नकारा बजाओ।

0: outside. Jim, you...
1: Aç, sahip. आज हमने दुश्मन को जो जोरदार तमाचा लगाया है उसके बाईस उन्हें होश संभालने के लिए कम से कम एक दिन का वक्त दरकार है। इस बहाने कुछ ऐसा करो कि लश्कर वाले कल की तकलीफ को भुला दें। और हाँ, फारिग हो जाने के बाद मेरे खेमे में आओ, मुझे एक इंतहाई राजदारी की बात करनी है तुमसे।

0: भाइयों, आप लोग पिछले दिनों के गमगीन वाकयात को भूल जाइए। अगरचे मैं ये जानता हूं कि हमारे ईरानी भाइयों का बेदर्दी से मारा जाना हमारे दिलों पे गहरा जख्म है, इत्मीनान रखिए कि इसका मरहम कल मैदान जंग में जरूर पालेंगे। अमीर मुख्तार के होते हुए, लश्कर खुदा के हुनर को देखते हुए, कल आप सब लोग कई मौजज़ात देखेंगे जिनका बावर करना खुदा के दुश्मनों के लिए मुश्किल है, और उन मौजज़ात को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो फिर जाइए, डट के खाइए, सुकून से सोइए, तमाम परेशानियों को भूलकर और तलखियों को सुपुर्द खा कर दीजिए।
1: साहेब, इस लश्कर पर खुदा की खास इनायत है, इनके लिए शिकस्त एक गैर मानूस शय है। कल की कुर्बानियां रमीए जमरात थी के लश्कर खुदा शैतान से गाफिल ना हो जाए। मौजजा

0: यानी मैं।
1: मेरी उम्र का एक बूढ़ा लकड़ी पकड़कर चलता है, सहारे का मतलाशी होता है, उसके हाथ कांपते हैं, उसकी कमर खम होनी चाहिए। मैं तुम लोगों के दादा की जगह पर हूं। अगर खुदा की इनायत ना होती तो बिन अमरो नादी किस तरह से घोड़े पर बैठकर तलवार चला सकता था और जुबैरी नौजवानों की एक फौज को मार भगा सकता था।

0: हमारा कितना नुकसान हुआ है झाड़ियों के परिंदे?
1: अब तक कुछ नहीं बता रहा शहसवार। मेरे आधे अफराद झाड़ियों में गए थे मगर इक्का दुक्का ही जिंदा लौटे हैं।
0: मुझे तो ये हैरत है कि शबस कैसे फंस गया।
1: मैंने बताया तो है कि नहदी बुढ़े के हमले से।
0: शबस से ऐसी गफलत और लापरवाही बईद थी।
2: तुमसे क्या छुपाना, मुझे भी काफी हैरत हुई जब मैंने देखा कि वो लापरवाही के साथ नहदी के करीब चला गया। यहाँ तक कि कुछ देर दोनों में गुफ्तगू भी हुई।
0: किस बारे में?
1: पता नहीं, मैं उनसे दूर था और उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक शबस टकराया और घोड़े से जमीन पर गिर पड़ा।
0: और तुमने कुछ भी नहीं किया?
1: मुझे क्या करना चाहिए था, दो पैर मेरे पास थे, दो पैर मजीद उधार लिए और भाग निकला। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ था कि शबस का बदला लेने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल देता।
0: हाँ, और वो भी उस वक्त जबकि तुम्हारी कूफे की निजामत का हुक्म अभी सूखा भी नहीं है।
3: मुहल्लब?
0: हाँ,
3: तुम इब्ने हुर की बातों पर यकीन कर सकते हो?
0: कौन सी वाली?
3: यही झूठी बातें जो उसने शबस की मौत के मुतालिक की हैं।
0: मैंने ये मान लिया कि शबस मर गया, मगर आज नहीं और न ही नहदी बुड्ढे के हाथों से। शबस तो उसी वक्त मर गया था जब उसने अपनी तलवार की कीमत का मुतालबा किया था।

0: हम लोगों को आज ही रात पीछे हटना होगा, मगर ऐसे कि हमारी फौजों को भी सुबह होने तक हमारी इस तदबीर की भिनक न पड़े। आज रात अंधेरा होते ही हमारी आधी फौज के साथ कूफे की जानिब चल पड़ो। अपने घोड़ों की सुमों पर कपड़े बांधो और बगैर कोई आवाज किए निकल जाओ, और सुबह का उजाला होते ही दौड़ते हुए आगे बढ़ना ताकि हरूरा के इलाके से निकल जाओ। अगर किसी ने इस बारे में पूछगछ की तो उसे ये कह देना कि दुश्मन पर शबखून मारने के लिए निकल रहे हो। हरूरा से दूर होने के बाद तुम अपने सिपाहियों को वजाहत करके तदबीर से आगाह कर सकते हो। कूफे पर पहुंचते ही अपनी खसूसी फौज को शहर के असली दरवाजे पर मुकर्रर कर दो और महल के अंबारों को खाने पीने के सामान से भर दो।
1: और अगर उन्होंने हरूरा से बाहर जाने के रास्ते में जासूस छुपा रखे हो तो?
0: शबस के मारे जाने के बायस मुहल्लम और मुसब की उर्दू का हमें काफी हलचल मच गई होगी। मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे पीछे हटने का सोच भी सकते होंगे, और खास तौर पर आज जबकि हम मैदान के फाते रहे हैं। मगर फिर भी मैंने कुछ कारिंदे मुहैया किए हुए हैं ताकि तुम लोगों के पहुंचने से पहले शबखून मारने के इरादे से तुम्हारा रास्ता खोल देंगे।
1: काश मैं रुक जाता और आप चले जाते।
0: खुलूस और मोहब्बत मुझसे पोशीदा नहीं है साहिब, मगर आज दुश्मन नामे मुख्तार से ज्यादा डरता है बनिस्बत उसकी फौज से।

0: तुम मैं रुककर दुश्मन को मसरूफ रखूंगा ताकि तुम बहिफाजत कूफा पहुंच सको।
1: माफी चाहता हूं अमीर, यकीनन आपने अपने हर तदबीर में हर जावे के बारे में सोचा होगा, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर ना कहूं तो दम घुट जाएगा। कूफियों की बेवफाई से मुताद रहिएगा।
0: मैंने कभी भी कूफियों से वफादारी की उम्मीद नहीं रखी है। मेरे लिए वफा या जान कूफियों की बेवफाई के दिनों का जखीरा थी। अगरचे मरहूम बिन शुमैद की गफलत एक अजदहा बन गई और क्याम के कठिन दिनों के जखीरे को डस गई, मगर अभी भी कुछ ऐसी गैर मलई ताकतें मौजूद हैं जो बवक्त जरूरत सामने आकर क्याम की हिफाजत कर सकती हैं। जाओ साहेब, पुरसकून होकर जाओ, अपने और तमाम सरकारी अहदेदारान के अहलो अयाल को कसर कूफा में मुंतकिल कर दो। उमरा और उम्मे साबित को फरामोश मत कर देना, उमरा आ जाएगी मगर उम्मे साबित शायद कुछ जिद बहस करे। उसकी बदतमीजियों को अनसुनी करके उसे कायल कर लेना। बहुमीद दीदार दर कूफा।
2: इस बेदीन कज़्ज़ाब ने यह साबित कर दिया है कि यह अजम के साथ और अजम के बगैर दोनों तरह से गालिब आने वाला है। शबस न मारा जाता। उसे मालूम था कि मुख्तार के पास कौन कौन से सहारे मौजूद हैं।
3: मुझे शबस के मारे जाने पर शक है भाई।
2: किस बात पे शक है तुम्हें?
3: मुझे पता नहीं, मेरा अंदाजा है। शबस एक मोहताद और चालाक इंसान था, वो आसानी से जाल में फंस नहीं सकता। वो जंग के राज रुबूज से वाकिफ था, उसके खौफ और खतर से आगा था, अच्छी बुरे की तमीज रखता था। ये बात मानने के काबिल नहीं कि वो इतनी आसानी से मर जाए।
2: क्या जाफर का ख्याल ठीक है मौलव?
4: हम ख्यालात का दामन क्यों थामे जबकि हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक है।
2: अगर हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक होती तो आज मुख्तार की कमर खम हो जाती। मुझे यकीन है कि शबस को वो बातें पता थी जो हमें मालूम नहीं।
4: मसलन कौन सी बातें?
2: यही मुख्तार की मजीद फौज और मख्फी ताकतें और हैरत अंगेज फनून और लश्करे।
4: शबस ने खामखा एक फजूल की बात कर दी थी और फिर एक चिड़िया के बजाय एक मोटा ताजा परिंदा शिकार कर गया। उसने अपने आप को महंगा बेचने की बात की थी जो उसने किया। बसरा की हुकूमत कोई छोटी कीमत न थी।
3: यही बात एक पहली नहीं लगती जनाब मोहल्लब? शबस इतने शोर शराबे और शर्तो शरूत के बावजूद बसरा की हुकूमत तो हासिल कर गया, लेकिन ये आरज़ू उसके दिल में रह गई। क्या ये अजीब नहीं?
4: शबस हद से ज्यादा दुनिया से हिरा सकता था। तुम यूं क्यों नहीं सोचते कि उस तख्त को पाने की मस्ती ने उसे गिरा डाला हो? ये मान लीजिए कि शबस बसरा की हुकूमत के कबाले के साथ हुकूमत बनी जुबैर के लिए वबाल बन जाता। खुदा का शुक्र कीजिए कि उसका शरदफा हुआ।
2: मोहल्लब, आज जब खुद मुख्तार आया तो हम पहले मुकाबले में मखलूब हो गए। तुम इस बात से फिक्रमंद नहीं हो क्या?
4: नहीं।
2: क्यों?
4: मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, मुख्तार अजमों को खोने के बाद जो उसके लश्कर की अक्सरियत में थे अब हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। वो हरूरा से मजार की तरफ चल पड़ा ताकि हमें रुकावटों की सहमत में डाल सके, और वाकई उसने काफी नुकसान किया है हमारा। उसकी आज की ये कामयाबी इसी जगह की तब्दीली का नतीजा है। अगर मैं गलती पर नहीं तो मुख्तार अपने इस चूहे बिल्ली के खेल के जरिए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना चाहता है। वो जंग को कूफे के अंदर खींच कर ले जाना चाहता है।
2: मुख्तार और पीछे हटना नामुमकिन है। वो अपने आप को करारे गैरे फरार समझता है। ये पेशगोइयां दो टके की भी नहीं है। अगर मुख्तार पीछे हटना चाहता और कूफे को ही मैदान जंग बनाना चाहता तो हरगिज कूफे से ना निकलता। वो बात करो जो अकल में आए, समझ में आए।
4: मैं सिर्फ अपनी राय का इजहार कर सकता हूँ। अमीर को रद्द करने का इख्तियार है, चाहे तो मेरी राय को कबूल ना करें।
2: मोहल्लब, अगर मुख्तार कल भी आज की तरह कारनामे दिखाता रहा और हमें और हमारे लश्कर वालों को डराता रहा तो मुझे

0: पूरन वो करना पड़ेगा जो मुझे पसंद नहीं।
1: मैं आपके इसरार पर आपके साथ खड़ा हूं अमीर, नहीं आपकी धमकी से डरता हूं और नहीं अफसरदा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आज के बाद खामोश रहूं और बकौल आपके नामाकूल राय न दूं तो ठीक है, मैं खामोश हूं।

0: तुम हमारे लश्कर की अकले कुल हो, कुछ ऐसा करो कि मुख्तार कल मैदान हार जाए।
1: बहुत खूब, कल मैं खुद मैदान में जाऊंगा, उम्मीद है शर्मिंदा न होऊंगा। मैं नसीहत करता हूं कि मुझे एक खैरख्वाह बाप जानिए बनिस्बत एक अच्छे मुशीर के। शब बख़ैर।

0: आज कौन सी चाल सोच रखी है तुमने?
1: जुबैरियों के पास एक अकले कुल है जिसका नाम है मोहल्लम, जो कि एक सुराग से दो बार डसा नहीं जा सकता।
0: यकीनन आज साहिब की हुनर नुमाई का दिन है, जिसने अपने हमले को कल रात से शुरू कर दिया है।
1: मुझे नहीं मालूम।
2: इस्माइल
3: जाओ, अगर मैं गलती पर नहीं तो आज तुम्हें बाजी दिखानी होगी। जाओ।

0: ये क्या कर रहे हो मोहल्ला?
1: बेवकूफ बना के वार कर, जादू करने का इरादा है आज मेरा जो काम मुख्तार ने किया।
0: तो मुख्तार के खौफ ने तुम्हें भी बहमी बना दिया है?
1: जब तक ये झाड़ियाँ और ये जंगल होगा, मुख्तार पर गलबा पाना मुश्किल है। झाड़ियों में आग लगा रहा हूँ ताकि इसकी दिलसोज पुकार हर सुनने वाले को पागल कर दे।

जाओ शहजादे, जाओ जो जो देखा है अपने भाई को बता दो। आज की महारत मोहल्ला हर उस शख्स के लिए देखने वाली है जिसके दिल में जर्रा बराबर भी जुरत हो।

0: अमीर, फौजी थक गए हैं, बेहतर ये होगा कि कुछ देर आराम कर लें।
1: नहीं अजम, मुझे डर है कि हरूरा की खबर हमसे पहले कूफा पहुंच जाए और सारा काम बिगड़ जाए। तुम तो कूफियों को जानते हो, राय का पहाड़ बना देते हैं। इन्हें सिर्फ ये पता चल जाए कि मुख्तार पीछे हट गया है, अफवाह फैल जाएगी कि क्याम की फातह खानी की मजलिस बर्फ हो रही है।

0: ऐ हमारे बूढ़े शेर, ये साबित कर दो कि जुबैरियों का बूढ़ा भेड़िया हमारे सफेद रेश वाले मुजाहिद को मغلوب नहीं कर सकता।
1: जाओ बिन चाहता, मैं जो चाहता था वो मैंने पा लिया। जाओ, मुख्तार तुम लोगों का मुंतजर है।
0: हम साथ जाएंगे भाई।
1: तुम अपना वक्त जाया कर

0: हाय मुख्तार कितना तन्हा हो गया है।
1: जनाब अमीर का इरादा है कि शहर कूफा को मैदान जंग बनाए।
0: क्यों नहीं, मुख्तार मुश्किल तरीन मैदानों का मुदब्बिर है, वो बखूबी जानता है कि खौफ खदर के दिनों में क्या करना चाहिए।
1: खुदा आपकी जबान मुबारक करे बानो, जनाब एक साहिब का भी यही मानना है। उनका हुक्म है कि वक्त जाया किए बगैर कूफे की जानिब निकल जाना चाहिए।

0: अरे वाह बानो उमरा, आपकी ज्यारत से बहुत मसरूर हूँ।
1: आप कौन हैं?
0: आपको हक है मुझे ना पहचाने। कुछ अरसा पहले एक छोटा सा सिपाही था आपके शोहर की रकाब में। तकदीर का क्या कहना, अश्तर के बेटे के लालचीपन ने मेरे और मुख्तार के दरमियान जमीन और आसमान का फासला पैदा कर दिया। और अभी इब्ने जुबैर के लश्कर में हूँ। और फिर कूफे को फतह करने के बाद कूफे के हजारों कबीले वाले शहर का नाजिम बनूंगा। आप पहचाना आपने?
1: अच्छा, काश तुम्हारा किरदार भी तुम्हारे नाम की तरह होता। इस बच्ची को देखो, किस कदर डर रही है। ये जो तुम कर रहे हो, क्या ये मर्दानगी है?
0: हरगिज नहीं, बहुत बड़ी बेगैरती है ये। हमारी जंग तो मुख्तार से है, उसके घर वालों से नहीं। बेहतर यही होगा कि आप ये जान लें कि जब आपके अदलो इंसाफ के पैकर मियां साहेब का हाथ मुझ तक ना पहुंच सका तो मेरी बीवी को कैद कर लिया उसने। अगर मुझे इजाजत होती तो मैं कूफे तक आपकी मुशायत करता, मगर क्या करूं, मैं मजबूर हूं। हमें जनाब मुसब के पास जाना होगा, हतमी फैसला उनका होगा।

0: बिन कामिल अरबी बिन अनस बिन शुमैत सब मर गए हैं। अश्तर का बेटा भी मुसल में बादशाहत की हवस लिए बैठा है और मुख्तार से कट गया है। मुख्तार तन्हा है, अगर उसके पास कुदरत होती तो वो हरूरा में मुसब के सामने खड़ा रहता और जंग को कुफे की गलियों तक खींच कर ना लाता।
1: पीछे हटना भी एक जंगी तदबीर है अम्मा।
0: हाँ, लेकिन बशर्ते कुफा मैदान जंग ना हो। अगर मुसब का हाथ कुफे तक पहुँच जाए तो कुफे वाले उसके कदमों की खाक को आंखों का सुरमा बना लेंगे।
1: ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है अम्मा, जब मुख्तार की बीवी ही उसके साथ खड़ी ना हो तो कुफियों से क्या तवक्को रखना। आप मेरे बात के आशिक हैं या नहीं?
0: अच्छा अच्छा, इन बातों का तुमसे क्या वास्ता? सच कहते हैं कि आखिरी दौर आ गया है, शर्मो हया तो तुमको छूकर नहीं गुजरी। तुम लड़की हो जो इश्क आशिकी की बातें कर रहे हो अपनी माँ से?
1: कोई कुफ तो नहीं किया मैंने अम्मा। आप बाबा की आशिक होंगी तो उन्हें तरह नहीं छोड़ेंगी।
0: हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे।
1: आप मत आइए, मैं तो जा रहा
0: हूं। ऐसे कैसे जा रहे हो? क्या मैं मर गई हूँ कि मेरा बेटा जो चाहे कर गुजरे? तुम्हारे बाप की घमंड और रटाई से तो निमट नहीं सकी, मगर तुमसे तो निमट सकती हूँ ना। चलो अंदर चलो।
1: अम्मा
0: मुंह बंद करो, तुम्हें नहीं मालूम कि जो भी महल में चला जाए वो मुख्तार के जुर्म में शरीक होता है। मुसब ने महल पर कब्जा कर लिया तो सबकी गर्दनें उड़ा देगा, फिर तुम्हारा क्या होगा?
1: काश इस बात की इजाजत होती कि मुझे ऐसा बेटा तुम जैसी माँ का मुनकिर हो जाए। अब मुझे समझ आया कि मुख्तार हमारे इस घर में क्यों नहीं रहता। जो घर इश्क से खाली हो वो जहन्नम होता है।
0: कहाँ जा रहे हो साबित? मत जाओ अम्मा की जान, मेरा हाथ टूट जाए। मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। नायला, मेरा अम्मा है ना, तो जल्दी जल्दी करो, साबित चला जाए। तुम लोग घर के मुहाफिज हो या खेत के पुतले हो?
2: क्या हमसे कोई गलती हो गई बानो?
0: तुम लोग अंधे थे क्या जो मेरे बेटे को घर से भागते हुए नहीं देखा?
2: अरे भागने वालों में से नहीं है बानो, खुदा का शुक्र है वो बहुत अकलमंद और मुअद्दब हैं। वो महल की तरफ गए हैं, बज़ाहिर जनाबे मुख्तार का हुक्म है। आप कब तशरीफ ले जा रही हैं बानो?
0: मैं किसी जहन्नुम में नहीं जाऊंगी। ये बाप बेटे एक दूसरे को देख लेंगे तो फिर कोई ताकत इन्हें जुदा नहीं कर सकती। खुदाया मेरा बेटा मुझे लौटा दे।
3: अरे वाह, नजूमे शहजादे को देखकर हमारी आंखें ठंडी हो गई। हमारा कमर दर अकरब खत्म होगा साबित।
4: इन बातों का वक्त नहीं है साहिब, मुझे कहीं छुपा दो।
3: क्यों? खुदा ना खास्ता हमारे छोटे अमीर को कोई खतरा लाहक हो गया क्या?
4: मेरी माँ साहिब, मेरी माँ।
3: मैं समझ गया, यकीनन आपकी और आपकी वालदा मोहतरमा की महल में आने के मुझ पे लड़ाई हो गई होगी ना।
4: ये लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। जल्दी करो साहिब, अभी आ जाएंगी।
3: या साहिब बेशक, जाओ जाओ, उस गाड़ी के नीचे छुप जाओ।

0: मेरी मदद कीजिए बाबा। अम्मा महल में आना नहीं चाहती और मुझे भी आपसे जुदा करना चाहती है।
1: क्या तुम वाकई बाबा के पास रहना चाहते हो?
0: जी बाबा, मैं मुख्तार का बेटा हूँ, उसकी तमाम तर अच्छाइयों का वारिस हूँ। मैं सिर्फ घर बाग और दरो दीवार का वारिस नहीं रहना चाहता। मुख्तार की बेहतरीन मिरास शमशीर और शुजात है।
1: मरहबा मेरे बेटे, फकत इतना मत भूलना कि मुख्तार की असली मिरास इश्क अली है।
2: मुख्तार, कम अज कम खुदा के वास्ते इस बार तो मेरी लाज रख लो। मेरे बेटे की जवानी पर रहम करो और उसे मेरे हवाले कर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरा जिगर गोशा इक्तदार के भेड़िए की खुराक बन जाए।
1: नारिया, जुबैर के बेटे मुख्तार की औलाद से भी घबराते हैं, उनके हाथ साबित तक पहुँच जाए तो वो उसे मार डालेंगे।
2: ये मनुस महल भी तुम लोगों को डस लेगा।
1: इन्ना महल उसरे युसरा, बेहतर होगा कि तुम भी महल में ही रहो।
2: मैं ऐसा नहीं कर सकती मुख्तार, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें अजियत दी है ताकि तुम्हें बचा सकूं। जब मैं तुमसे ना उम्मीद हो गई तो मैंने अपने बेटे से उम्मीद लगा ली, क्योंकि वो तुम्हारी बू रखता है। अफसोस, मुकद्दर यही था कि मेरी तमन्नाएं बर्बाद हो जाए। जाहिर है ये भी मुख्तार से मोहब्बत करने का बदला है।
1: नारिया, ये मत भूलना कि तुम उस शख्स की बीवी हो जो अपनी गैरत और शराफत का किसी भी मोती के बदले सौदा नहीं करता।

0: sahip. Hombre, acá.
1: बदकिस्मती से बानो उम्र जुबेरियों के हाथों कैद हो चुकी हैं।

0: तुम्हारी क्या राय है मोहल्लब?
1: मैं जनाब नाजिम की राय से मुत्तफिक हूँ। शहर कूफा के अंदर जंग लड़ना हर लिहाज से हमारे लिए नुकसानदेह और खतरनाक है। हमारे सिपाही कूफे में अजनबी हैं, मुद्दतों से अपने घरों से दूर हैं और फिराक को काट रहे हैं। जंग के दौरान खाना पीना जमा करना भी एक कठिन काम है। कूफियों को शहर में हमारे होने से नामन होने का एहसास नहीं होना चाहिए, वरना हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। तवक्को इस बात की है, मुख्तार ये चाहता है कि हमें और कूफे के लोगों को आपस में लड़वा सके। मैं ये मशवरा दूंगा कि झगड़े से गुरेज कीजिए। हमारा कूफे के लोगों से जो भी बर्ताव होगा वो जंग के अंजाम का तायुन करेगा।
0: ठीक है इब्ने हुर, हम लोग छोटे रास्तों से कूफे में दाखिल होंगे। तुम कूफे और कूफियों को बखूबी जानते हो। मोहल्लों और कबीलों के अखलाक के मुताबिक ही शहर के अहदेदारों का तायुन करो। खुसूसी ताकीद करो कि वो लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए। लश्कर वालों की जरूरियात को मुनसिफाना कीमत पर खरीदो। किसी की नापाक नजरें लोगों के नामूस पर ना उठे और ना ही कोई शख्स उनके माल पर लालच रखे। खताकारों को शदीद तरीन सजा सुनाए, कोई गलती ना हो।
2: जी अमीर। और हां, बानो उमरा, मुख्तार की बीवी और नुमान इब्ने बशीर की बेटी हमसे इत्तेफाका ना मिली। उनके कारवां को एहतराम के साथ रोक लिया गया है ताकि आप खुद उनके बारे में हुक्म फरमाएं।
0: सुन रहे हो मोहल्लब, खुदा हर तरफ से हमारा ही मददगार है। हमें शिकार करने की जहमत ही नहीं करनी पड़ी, शिकार खुद चलकर हमारे जाल में फंस गया। कहा है?
2: आपसे चंद कदम के फासले पर है। अगर आप मायल हो तो उसे आपके पास लेकर आऊं।
0: नहीं नाजिम शहन, नहीं, हम खुद उनके दीदार को जाएंगे।

0: ना ना, तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है बानो, अंदर तशरीफ ले जाइए। साए में आप इराक की तेज धूप से महफूज रहेंगी।
1: मुझसे कौन बात कर रहा है?
0: मुसब इब्ने जुबैर।
1: जनाबे मुसब, इराक की धूप अजनबी को जला देती है, मगर यही इराक की धूप इराकियों के लिए माँ की आगो

0: मतलब हम इराक में अजनबी हैं।
1: आप हिजाज से आ रहे हैं, फैसला आप ही के हाथों में है कि आप इराक में अजनबी हैं या नहीं।
0: तुम्हारे शौहर ने मजबूर किया कि हम इराक की तरफ लश्कर कशी करें और ऐसी जंग शुरू कर दें जो सिर्फ भाई भाई का कत्ल है।
1: अगर मुख्तार को आप लोगों से जंग करनी होती तो वो हिजाज की तरफ लश्कर कशी करता।
0: क्या उसने हिजाज की तरफ लश्कर कशी नहीं की? लकड़ी लाठी लेकर खाना काबा के सहन पर टूट पड़े और ज़दुकोब करके लूट मारना चाहिए।
1: काबा हर में अमन है और जंग सहने काबा में हराम है। हाशमी सैयद की जान बचाना क्या लश्कर कशी कहलाता है?
0: बानो, आपके जादूगर कज़ाब और सफाक शोहर को हरूरा में शिकस्त हो चुकी है। आप हमारी कैद में हैं। एक फाते की तरह क्यों बात कर रही हैं?
1: हर गिरने को शिकस्त का नाम नहीं दिया जाता जनाबे मूसब। अगर आप मुख्तार को मेरी तरह पहचानते तो अपने पैरों से चलकर कुफे के भंवर में न फंसते।
0: आप क्या कायद और अफकार अफसोसनाक है बानो। आप हमारी मेहमान हैं। अदब और इस्लाम दोनों का यह तकाजा है कि हम मेहमान को मोहतरम जानें।
1: कुफा हमारा घर है। आप गासिब हैं जो घर वालों की इजाजत के बगैर उसके घर में घुस आए हैं और फिर गासिब हैं क्योंकि अपने आप को घर का मालिक कहने लगे हैं।
0: आप इस दसने वाली जबान से मुझे गुस्सा नहीं दिला सकती मोहतरमा। हम मुसलमान हैं और ऐसे हालात में हैं सब्र और खामोशी का हुक्म है और तवक्कुल भी। इब्ने हुर, इस खातून को हिफाजत के साथ कूफे ले जाइए और मुख्तार के घर में ठहराइए।
1: जब आपको ये यकीन हो गया है कि आप मुसलमान हैं, मुझे मेरे शौहर के पास जाने की इजाजत दे दीजिए।
0: ये नहीं हो सकता। जो मुनहरिफ अफकार आपके हैं उनके मुताबिक जायज नहीं है कि आप मुख्तार के पास जाएं।

इसीलिए इस अल्लाह ताला ने सूरह हिज्र में फरमाया वअबुदु रब्बका हत्ता यातिकल यकीन, तो उस वक्त तक इबादत करते रहो जब तक कि तुम्हें मौत ना आ जाए, लगे रहो मायूस मत हो, क्योंकि शैतान ये चाहता है कि हम इबादत ना करें, खुदा का शुक्र अदा ना करें, खुदा की याद में मशगूल ना रहें। और खुदा उतना ही चाहता है कि हम उसकी याद में मशगूल रहें, काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसीलिए रमज़ान, बज़ फैसलो कहते हैं ना भाई, रमज़ान आगे और रमज़ान के बाद ख़त्म, सीज़न नहीं है, रमज़ान का सीज़न, मुहर्रम का सीज़न, अरबईन का सीज़न, हम लोग सीजनल लोग नहीं हैं, हम परमानेंट वाले लोग हैं, हमारा ईमान परमानेंट है, सीजनल नहीं है। और हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम हर दौर में, हर मरहले में इमाम हुसैन को याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखें, खुदा को याद रखें, ताकि हमें लाइन ऑफ एक्शन हमारे लिए क्लियर हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को बताएं, सिर्फ ये नहीं बताएं कि बेटा इमाम हुसैन शहीद हो गए थे, एक हिस्ट्री नहीं है, ये लाइफस्टाइल है, हुसैनी लाइफस्टाइल, अब हमें हुसैनी लाइफस्टाइल पे गुजरना है। अब ये काले कपड़े मैंने पहने हुए, बहुत सारे माशाल्लाह मोमिनीन ने भी पहने हुए, अब नौ रबीउल अव्वल के बाद हम पहनेंगे, कपड़े चेंज हो जाएंगे, कपड़े चेंज हो सकते हैं, दिल चेंज नहीं होना चाहिए, दिल में जो इमाम हुसैन ने असर डाला है वो रहना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है, लिबास इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका अपना एक टाइम है, वो ठीक है उस टाइम पे हो, उसके बाद दिल, फिक्र, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये सेंट्रल पॉइंट है अशरा और अरबईन का, कूनु लना ज़ैना वला तकूनु अलैना शैना। अब इमाम हुसैन हमसे यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमारे लिए जीनत बनो, हमारे लिए बायस शर्मिंदगी ना बनो। आपने अशरा भी गुजार लिया, अरबईन भी, सब कुछ हो गया, अब लोग हमें देख रहे हैं, हमारे अमल को देख रहे हैं, वो 40 दिन तक हम इबादत करते रहे, सब कुछ करते रहे, उसके बाद लोग देख रहे हैं कि कोई चेंज आया या नहीं आया, ये साहब जो मुझसे पहले मिलते थे अब अच्छे से मिलते हैं या नहीं, घर में अगर मैं सरपरस्त हूँ तो मैं अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या नहीं, या मेरा वही एटीट्यूड है, अगर मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो मैं अपने कुलीग्स के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ या नहीं, मैं जस्टिस कर पा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने तो मुहर्रम में यही सीखा है कि हक़ बात कहो, हक़ का साथ दो, लोगों के साथ इंसाफ के साथ पेश आओ, बड़ों का ख्याल रखो। हम में से कितने लोग हैं जो बुज़ुर्गों का ख्याल रखते हैं, हम में से कितने लोग हैं जो सीनियर सिटीज़न के घरों में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे अहवाल पुरसी करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके पास बात करने वाला कोई है या नहीं है, हम में से कितने जवान ऐसे हैं जो ये काम करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है करबला के मैसेज को समझना, क्योंकि उसमें हर एक शख्स ने अपना एक रोल प्ले किया है। तो करबला हमें सिखाती है कि आपको ऑनेस्ट होना है, आपको काइंड होना है, आपको ट्रस्टवर्दी होना है, आपके अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, जेनरोसिटी होनी चाहिए, तमाम वैल्यूज़ आपके अंदर होनी चाहिए। ये 40 दिन हमने वैल्यूज़ जमा किए हैं, तो सवाल मेरा आपसे ये है और अपने आप से भी है कि हमारे कम्युनिटी के कोर वैल्यूज़ क्या हैं। मैं अपने बच्चे को क्या बताऊँ कि हमारे कम्युनिटी के कोर वैल्यूज़ क्या हैं। भाई देखिए, आप इस कम्युनिटी को किस तरह से जाना जाता है सोसाइटी में, लोग कहते हैं ये एक बिज़नेस कम्युनिटी है, एक आइडेंटिटी आपकी ये है ना कि इट्स अ बिज़नेस कम्युनिटी, लेकिन आपकी ईमान की क्या आइडेंटिटी है, आपके अखलाक की क्या आइडेंटिटी है, क्या कहेगा कोई कि ये कम्युनिटी अखलाकी एतबार से, वैल्यूज़ के एतबार से, इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पर कोई ये कहेगा कि हाँ मैं ये जब ज़बान देते हैं तो उस पर कायम रहते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर ये कोई मामला करेंगे तो उस पर पक्के हैं, ये एक मिसाल दी है मैंने खाली। इस तरह हमारी कम्युनिटी के बारे में लोग क्या कह सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए कि हम जो चीज़ मुंतकिल कर रहे हैं अपने आने वाली नस्ल को, हमें पता होना चाहिए और हमें इसको डिस्कस करना चाहिए कि हमारे कोर वैल्यूज़ कौन से हैं। जाहिर बात है हमारे वही कोर वैल्यूज़ होंगे जो कुरान के कोर वैल्यूज़ हैं, जो अहले बैत के कोर वैल्यूज़ हैं, लेकिन इसको डिस्कस करना चाहिए और उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए और उसको लॉन्च करना चाहिए, ताकि ये सब के अंदर आए और सब एक बात कहें और एक दूसरे को रिमाइंड भी करें। वक्त जो है वो

तो अब दूसरा साइड क्या है, कुरान क्या कहता है, इन्नल्लज़ीन आमनू व आमिलुस सालिहात। कॉइन का दूसरा साइड है अमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अमल का टाइम है, अब एक्शन का टाइम है, क्योंकि कुरान की बेशुमार आयतों में ये जिक्र हुआ है, इल्लज़ीन आमनू व आमिलुस सालिहात, ये हर जगह है, साथ साथ है, टुगेदर है। क्योंकि अगर सिर्फ ईमान दिल में है तो वो काफ़ी नहीं है। जैसे बाज़ ख़वातीन अपने शौहर से कहती हैं कि आप हमेशा कहते हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन आज तक तो कुछ दिया नहीं आपने, कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया हमें, आप तो आज तक एक फूल भी नहीं लेके आए मेरे लिए, ये कैसी मोहब्बत है जिसका आप इजहार ही नहीं कर रहे। तो ये भी ऐसे ही है, मुझे इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत है लेकिन अमल में कुछ नज़र नहीं आ रहा, एक्शन में नज़र नहीं आ रहा। तो एक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, द फ्रूट ऑफ नॉलेज इज़ एक्टिंग अपॉन इट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ का एक फल होता है, तो अमल का फल ये कि अब इल्म का फल ये कि वो अमल में नज़र आए, वरना वो खबर है। सो द मजलिस गिव्स अस नॉलेज, द फ्रूट ऑफ दैट नॉलेज इज़ टू एक्ट अपॉन इट। पहला पॉइंट ये है कि हमें अपनी डेली प्रेयर्स को चेक करना है, हम अपने आप को एसेस कर रहे हैं कि इस 40 दिनों में हमें क्या फ़र्क आया। तो हमें देखना है कि हम जो नमाज़ें नहीं पढ़ रहे थे हमने वो पढ़नी शुरू कर दी या नहीं, अगर पढ़ रहे थे तो क्या टाइम पे पढ़ना शुरू कर दी या नहीं, अगर टाइम पे पढ़ रहे थे तो क्या जमात के साथ पढ़नी शुरू कर दी या नहीं। इसको चेक करते रहना है और अपने आप को रिमाइंड कराते रहना कि इंशाल्लाह अगर नहीं भी कर रहे थे तो हम करते रहेंगे, कोशिश हम करते रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। जो कुरान हम पढ़ रहे थे तो अब हमने कुछ पढ़ना और शुरू कर दिया या नहीं, क्योंकि हमने इतनी सारी बातें मजलिस में सुनी कुरान के बारे में, तो क्या हमने एक पेज, दो पेज, पाँच पेज कुछ पढ़ना शुरू किया या नहीं, ये सवाल है। ये इमाम हुसैन हमसे भी पूछेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इमाम हुसैन से ना तो नमाज़ जुदा हुई ना कुरान, नेज़ों पे भी उन्होंने कुरान ही पढ़ा, तो हम जो उनके चाहने वाले हैं हम कैसे कुरान को छोड़ दें। हमें भी पढ़ना है क्योंकि हम हुसैनी हैं, ये हमारा दावा है कि हम हुसैनी हैं, इंशाल्लाह हम हैं। हमारी जो फैमिली रिलेशनशिप है, फैमिली मेम्बर्स से जो हमारे ताल्लुक़ है वो अच्छा हुआ या नहीं, इस मुहर्रम में हमारी बॉन्डिंग बढ़ी या नहीं, इस दफ़ा हम मेरे और मेरे बच्चों के दरमियान, मेरे और मेरे बीवी के दरमियान, मेरे और मेरे रिश्तेदारों के दरमियान सुलह हुई या नहीं हुई, हमने एक दूसरे को फॉरगिव किया या नहीं किया, क्योंकि इमाम हुसैन ने तो हमें ये सिखाया, तो हमने वो किया या नहीं किया, तभी इसी तरह तो हमें पता चलेगा कि हम पे कितना असर हुआ है। अब हम सच बोलते हैं या नहीं, सच के साथ खड़े रहते हैं या नहीं, हकीकत को डिफेंड करते हैं या नहीं, और अगर करना शुरू कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको और आगे बढ़ाएंगे। इस क्योंकि खुदावंद आलम ने कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, तो हमें सच्चे लोगों के साथ रहना है और हमें सच्चा बनना है, क्योंकि इसमें बहुत पावर है। शैतान आके डराता है कि सच मत बोलो, हक का साथ मत दो, पीछे हट जाओ, लेकिन जिस टाइम आप सच बोलना शुरू करते हैं उस वक्त जो एनर्जी आपके अंदर होती है वो सारे ईविल्स को ख़त्म कर देती है। इसमें बहुत पावर है, सच में बहुत पावर है। और आपने कभी इनजस्टिस के लिए मुकाबला किया है या नहीं, जब हम खुद कुछ मामला ऐसे आते हैं जहाँ पे फेवरिज्म की बात होती है, तो क्या हम वहाँ जस्टिस करते हैं या नहीं करते, या हम कहते हैं नहीं हमारी पार्टी का है उसको ले आओ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना, पोजीशंस होती हैं मुख्तलिफ ऑफिसेज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, हमें पता है कि ये आदमी एलिजिबल है, उसको प्रमोट नहीं करेंगे, किसको प्रमोट करेंगे, जो मेरी चमचागिरी करेगा, जो मेरे आगे पीछे घूमेगा उसको प्रमोट कर देंगे, फिर सिस्टम आगे जाके कोलैप्स कर जाएगा। फिर हम हमेशा ये पूछेंगे कि सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा, ये सिस्टम काम ही नहीं करता सही से, क्योंकि आपने नाअहल लोग बैठाए हुए, काम कैसे करेगा सिस्टम, आप अहल लोग बैठाएंगे तो काम करेगा सिस्टम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जस्टिस जो है वो बहुत बड़ा काम है, दीन के फंडामेंटल्स में से एक फंडामेंटल जस्टिस है, हमारी अकीदा जो हमारा है उसका एक फंडामेंटल जस्टिस है, अदल है। अदल होगी तो सोसाइटी प्रवेल करेगी, अदल नहीं होगा तो सोसाइटी प्रवेल नहीं करेगी। So this principle applies not only to global oppression but also to injustice in our homes, workplace and community. Service to humanity, behtareen service diye is dafa Muharram mein mashallah har saal dete, is saal community ke members ne bahut service diye, koi jagah aisi nahi chhodi ke jahan koi insaan pyaasa reh jaye ya uske paas koi tabarruk na pahunche, hatta ghar tak pahunchaya tabarruk, itna jazba aapke andar maujood hai, khuda salamat rakhe aapke is jazbe ko aur is imaan ko qaim rakhe, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है दूसरों की सर्विस करना, इसे बढ़ाएं, इसे

सिर्फ कम्युनिटी तक लिमिटेड ना करें, इसे और आगे ले जाएं, क्योंकि हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। मैंने देखा है माशाल्लाह जुलूस में आप बहुत सारे लोगों को सर्व करते हैं, उसमें बहुत अच्छी बात है, इसको और बढ़ाएं, कि हमारी आइडेंटिटी है ये। और नेक्स्ट जनरेशन को ज़रूर तैयार करें कि आशूरा सिर्फ एक स्टोरी ना रह जाए, बल्कि वो एक हरकत पैदा करे, वो एक मूवमेंट पैदा करे हमारे अंदर और हमें आगे लेके चले, क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए बस आखिर में, और हमें क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है किस चीज़ के लिए, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए। अरबईन इज़ नॉट ओनली रिमेंबरेंस ऑफ पास्ट, इट इज़ प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर। Every prayer performed sincerely, every act of justice, every service to humanity, and every step towards righteousness prepares us to be among the supporters of Imam al-Mahdi ajjala ta'ala farajahu sharif. So now it's our responsibility to carry its light into our homes, workplace, school, madrasa, and society, so that we can ask ourselves, am I praying better than last year? Is my character better? Have I forgiven someone? Have I helped someone? Do people see Hussein in my conduct or not? So the answer is yes. Ki Karbala has transformed us. Isme koi shak nahi hai. Hum sab ke andar tabdili aayi hai. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Abil Qasim Mustafa Muhammad. وآله الطاهرين سيما علي امير المؤمنين فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وحسن ابن علي والحجة ابن حسن قائم المهدي صلوات الله عليهم اجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اجل وليك الفرج والعافيه والنصر واجعلنا من خير انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم

0: नहीं वरना तुम्हारे बदन की खाल निकाल कर उसके कपड़े बनाता। उस खत में क्या था कि जिसको रंग वाली देग में फेंक दिया?
1: मैंने नहीं फेंका।
0: अगर किसी और ने फेंका है तो उसको भी ढूंढ लेंगे। बच तो हमसे वो भी नहीं सकता।
1: माफ कर दो, मैं बेगुनाह हूं।
0: अगर तुम बेगुनाह होते तो फरार नहीं होते।
1: तुम लोगों की हैबत से डर गया था।
0: खत किसने लिखा था?
1: मेरे सामान में कोई खत मिला क्या?
0: मैंने खुद देखा था कि तुम खत लेके जा रहे थे। अगर तुम्हारा दोस्त वक्त पे नहीं पहुंचता तो खत जरूर मेरे हाथ लग जाता।
1: खत देखा नहीं और एक तरह से मुझ पे तोहमत भी लगा रहे हो। कूफे के बुजुर्ग और बड़े कासिदों के होते हुए इमाम हुसैन की कूफे दावत वाला खत मुझे क्यों देंगे? क्यों?
0: अगर कुछ नहीं बताओगे तो यही हाल होगा जो अभी देख रहे हो। तुम्हारी एक भी हड्डी सही सलामत नहीं बचेगी।
1: क्या करूं? क्या करूं?
0: ऐसे ही चिल्लाओ, उस खत में दस्तखत करने वालों के नाम बताओ और बच जाओ।
2: ये वही है जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें तोहफे में दिया था। इसकी खुशबू तो सच में लाजवाब है। कोई और शाल नहीं है, इसका एक सीरा खराब है जिसकी वजह से जिस तरह से मैं इसे ओढ़ती हूँ इसका सीरा जाहिर हो जाता है। ये क्या नाइला?
3: जनाब बहुत खुशकिस्मत है क्या आप जैसे खूबसूरत बीवी है उनकी। अपनी शादी के दिन बहुत खुश थी आप।
2: मेरी खुशी के लिए यही काफी था कि कनीजी का उनवान मुझसे हट रहा था, मैं उसी में खुश थी। शादी का जोड़ा पहनना मेरे लिए इतना शीरी था कि मैं किसी और चीज़ के हिसाबों किताब की फिक्र में ही नहीं थी। इसको खराब ना करो।
3: मेरे काम का नहीं है, मैं तो किसी मरे हुए शख्स की बीवी हूँ।
2: रागिब तुम्हारा शौहर नहीं था, मर भी गया तो खुदा उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तुम वो हो जिसके लिए कूफे के दरवाजे से लेकर आसमान की आखिरी उफक तक आशिक की आशिक भरे पड़े हैं। बात को समझो बेटा।
3: हाँ तो फिर मेरे काम का है। लगता है कोई बात है जिससे मैं बेखबर हूँ।
2: क्या हुआ, तुम तो मायूस हो चुकी थी है ना?
4: ऐसे ही हमेशा खुश रहो।
2: सलाम और खुश आमदीद जनाब।
3: सलाम।
4: वालेकुम अस्सलाम। अब लगता है घर में रौनक लौट आई है।
2: अपनी बेटी के हुस्न और नजाकत की बातें कर रही थी जो किसी होर और परी से कम नहीं है, है ना?
4: बहुत अच्छी।
3: मैंने सोचा कि गम के बाद खुशी के दिन है तो अच्छा नहीं है कि मेरी शादी का जोड़ा खाक खाए।
4: तुम्हारी खूबसूरती की दिलबरी किसी से छुपी नहीं है, खास कर सिपाहियों का सरदार के शिद्दत से जिसका दिल तुम पर आ गया है।
3: कैसे?
4: यहाँ आने से पहले नईम से मुलाकात हुई, वो बहुत गुस्से में था, उसकी गैरत की रग जागी हुई थी। कह रहा था कि हर बार नायला का हाल इस तरह से पूछता है जैसे शौक और शौक की वजह से अभी उसके मुंह का पानी निकल जाएगा।
2: उस गंजे पस्ता आदमी ने गलत किया।
4: इनास
2: पस्ता आदमी, कूफे की फौज का सरदार कहाँ और औहद की बेटी कहाँ? उसके साथ इतनी नरमी से बात करते हो इसी वजह से इतना सर चढ़ गया है। मेरी बेटी के लायक शामी और दरबारी लोग हैं, ना कोई पुलिस और कूफी।
3: आपकी नजर में मेरा शौहर कैसा होना चाहिए? जैसे खलीफतुल मुस्लिमीन यजीद इब्ने माविया जैसा?
4: तुम अभी ठीक नहीं हो बेटी।

तुम पलवी लोग दिमाग की तरह हो, हमारी एक नजर हटते ही मनसूबे बनाने लगते हो। मुझे इजाजत।

0: मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, बाप के घर में भी और शौहर के घर में भी, बस यही।
1: अभी तो बाप के घर भी यतीम की तरह लग रही हूँ, कोई भी मेरे दिल की बात नहीं समझता।

0: जब तुम्हें सजा दे रहे थे तब तुम्हारी आवाज सुनी। ये बताओ, क्या तुमने सच में खत लिखा है? तुम्हारी मां का दूध हलाल हो तुम पर। इन जल्लादों के सामने किसी का नाम तो नहीं लिया? नाम लिया है क्या? यानी नाम लिया है जिससे तुम जिंदा हो।
1: दोहे फितना घर है, एक सलाखों के पीछे और दूसरा कैदियों के सामने।
0: धिक्कार है। जो कहना है कहो, लेकिन अली के दुश्मनों का साथ देना जफा है, जफा है। मुझ पर इल्जाम लगाते हो कि मैंने नोमान के सामने अली की तारीफ की है, उसकी सजा मिली है। मुझे बहुत मारा गया और मेरी उंगलियां भी काट दी गई। तुम्हें क्या पता कि मैंने क्या किया? अपनी जान हथेली पे रख दी अली के इश्क में, और तुम हो कि एक खत का इल्जाम अपने सिर नहीं ले रहे।
2: माफी चाहता हूं अगर मेरी वजह से देर हुई। हालात ठीक है।
1: वासित की क्या खबर है?
2: बहुत बुरी। उसकी एक भी हड्डी सलामत नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी इकरार करने के लिए मुंह नहीं खोल रहा और ऐसे अजीब दावे कर रहा है कि मैं शक में पकड़ा गया हूं।
1: शक? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और इसके बेटे, मैंने बताया बहुत ही पक्की और सच्ची खबर ये है। ये शख्स हुसैन इब्ने अली की दावत का इरादा रखता था, क्या ऐसा नहीं है? तुमने बताया था कि उसके साथी ने बीच रास्ते से उसके हाथ से खत ले लिया और तुमने देखा था रंग वाली देग में उसने कुछ फेंका था। तो फिर इन सब बातों को भुला कर खुद ही गमजदा हो बैठे हो?
3: अरे जरा छोड़ दो मुझे।
4: अरे कहा छोड़ दो मुझे?
5: उस्मानियों के मोहल्ले में इसने आफत मचा रखी थी।
3: अगर मेरे खून के बदले में अली को गाली देने से बाज आ जाओगे तो ये मेरी शह, तो ये मेरी शहरग। अली का इनकार रसूल खुदा का इनकार है। लानत हो खुदा की, अली और आले नबी को बुरा कहने वालों पर। लानत हो अली
1: बंद करो। अली का इनकार,
2: मैं जो भी कहता हूँ वो तजुर्बे की बिना पर कहता हूँ। और तुम्हारा दिल नाजुक है। जिस मुखबिर ने तुम्हें खबर दी, क्या वो मोतबर है?
1: मोतबर है।
2: इन दिनों कूफे के हर घर में खत लिखने वाला बैठा है और अली के बेटे को बुलाने की बात करता है। लेकिन क्या ये नामा वही खत है जिसको इनके बुजुर्गों ने लिखा है या नहीं, मैं इस बारे में अभी मुतमईन नहीं हूँ।
1: मुतमईन रहो,
2: मैं खुद तुम्हारे बाप की खिदमत में हाजिर होऊंगा और उन सब छोटी बड़ी खबरों से उनको आगाह करूंगा। लेकिन फिर भी मेरा सलाम कहना और कहना कि वो परेशान न हो कि वो अकेले नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर अम्र हुरैस का बेटा है तो उस बदबख्त की जबान से सबका नाम निकलवा के रहूंगा।
1: अगर उनके बुजुर्गों का नाम पता चल गया, अगर कर पाया तो फौरन मुझे खबर करना, अच्छा इनाम दूंगा।
2: तुम्हारी बहन का क्या हाल है? अब वो ठीक है?

0: कूफे के लोगों के दरमियान यह खबर फैली है कि इसका साथी तुम्हें जान से मारने वाला था, लेकिन तुम्हें अभी छोड़ दिया है। अपना ख्याल रखो।
1: मेरी जान नहीं ली, उसमें एक पैगाम है कि जिसको कूफे के लोग समझने से आजिज है। ये सही है कि मछली की तरह वो मेरे हाथों से निकल गया, लेकिन उसकी आंखों को मैं कभी नहीं भूल सकता। कोई जरूर है जो उस खत की हिकायत के बारे में सब जानता है। मैं ढूंढ लूंगा उसे।

0: ये क्या कर रही हैं आप? क्या मुझे पता नहीं होना चाहिए कि घर में नामहरम है?
1: मैं भूल गई, ध्यान नहीं रहा।
0: आप तो अक्सर मेहमान नहीं बुलाती थी।
1: मेहमान नहीं है, मदद करने आई है। एक गमजदा औरत की मदद, इस लड़की ने भी मेरा सुकून छीन लिया। क्या करूं बताओ? आह्या का ख्याल रखने आई है, और तुम भी घर में कहां रहते हो जो थोड़ा सा मेरी मदद कर सको?
2: मैं खुद अपनी माँ का ख्याल रख सकती हूँ।
1: चुप रहो।
0: खुदा करे ऐसा ही हो।
1: क्या मतलब?
0: बेहतर होगा कि मदद करने के लिए ही आई हो।

0: सलाम।
1: सलाम।
0: एक सवाल था। तुमने कहा था शायद उस दिन बासित के बारे में किसी को पता था। तुम जानते हो वो कौन था जिसने मेरे शौहर को बेच दिया?

0: बानो,
1: इससे पहले कि कोई हमें देख ले यहाँ से निकल जाना बेहतर होगा।
0: तो मैं क्या करूँ?
1: देखो, अगर साई की तरह मेरा पीछा किया तो ऐसा करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसे लो
0: और जैसा पहले था वैसा ही सिलो और ठीक कर दो।
1: सुना तुमने?
0: जो होगा

0: खुदा ना करे पर मुझे लगता है कोई मुखबिर घर में है और जिससे हम बिल्कुल बेखबर हैं।
1: नहीं, लेकिन शायद इन सब के बारे में खबर थी उसे। उसने इन बातों को उनसे कह दिया जिनसे नहीं कहना चाहिए था।
2: उस शख्स से मुराद मैं हूँ। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मैंने औहद के घर जाना छोड़ दिया, नहीं बताया?
1: माँ कह रही थी कि तुम औहद की बेटी के साथ जंग की मश करते हो और तन्हाई में बातें भी।
2: तुमने ऐसा मेरे बारे में सोचा भी कैसे? मैं हिलाल हूँ, इतना कम अकल और नादान नहीं कि ऐसा रास फाश कर दूं जो तुम्हारे शौहर और अपने सगे भाई जैसे शख्स की जान

के बाजी लगा दूं। तुम्हें हक है, तुम्हें शक करना भी चाहिए। इस कदर के इस खातून के बाप ने मेरी बेइज्जती की, इस कदर जहां भी बैठा मुझे सिर्फ लानत का तौक पहना, तुम्हें शक करना चाहिए। लेकिन अगर कोई रूसिया और खुदा का सामना करने की उसमें हिम्मत ना हो तो वो मैं नहीं बल्कि फाजिल है। वही फाजिल जिसने मेरी मां के कान भरे उसे भेजने का मशवरा दिया, मैंने नहीं। कहां है अब, कहां गया वो? अब जब हम मातम कदे में बैठे हैं तो फाजिल कहां है? जब हम इस बरज़ख में हैं तो फाजिल कहां गया? खाक हो मुझ पर, मैं कितना बदबख्त हूं कि अपने ही घर वालों के दरमियान इतना अजनबी हो गया हूं।

0: यहां कैसे? कुछ हुआ है क्या?
1: हाँ, कुछ हुआ है। गुमान किया कि आपको बताऊं तो शायद अच्छा होगा।
0: तो फिर मैं अपने तीरों कमान लेकर आता हूं।
1: नहीं, रुकिए, इस पर असलाह और मुहाफिज की जरूरत नहीं है। कुछ कहने आई हूं, कहकर चली जाऊंगी।
0: क्या हुआ?
1: अगर तुम्हें कातिल कहा है तो ये सच है। इस दिल का खून तुम्हारी गर्दन पर है। इकरार करने के लिए यहां आई हूं। पर्दे से निकलकर आई हूं ताकि बेपर्दा तुमसे कह सकूं कि क्या किया मेरे साथ। मेरे दिल का शिकार कर लिया, लेकिन अभी भी बेखबर।

0: बिनते ओहद होश में तो हो, मैं
1: मुझसे शादी करोगे? अभी नहीं, बाद में जवाब देना, तीर कमान की मशक के वक्त।

0: भी हालात कैसे चल रहे हैं आपको शायद इल्म नहीं है।
1: कैसे?
0: दरबार में आपका असर और रसूख कूफे के हालात को

0: कंट्रोल करने में किस हद तक मुफीद है।
1: इस आखिरी उम्र में वही ताजिर बनकर रहूंगा, इसी में मेरी और बाकी सब की मसलहत है।
0: आप और अमीरुल मोमिनीन यजीद के दरमियान राब्ता है जिसने नुमान को छूट दे रखी है। अगर खत का माजरा और आपका राब्ता पहले की तरह होता, किसमें हिम्मत होती कि हर छोटे बड़ी कूफी के एतराजात के सामने खामोश रहता और मसलहत अंदेशी से काम लेता।
1: मुझे ताज्जुब है इतने जवान और सियासत मदार लोगों के होते हुए एक अय्याश अमीर बन जाए।
0: अमीर शाम की शिकायत करते हुए वाली कूफा से आंख लड़ाते हो?
1: क्यों नहीं,
0: खुदा की कसम, अगर खत लिखने के बजाय और उसकी नाकाबिलियत की खबर दरबार तक ना पहुंचाए तो नुमान की इस अहमकाना सियासत के चक्कर में हम सब फंस जाएंगे।
1: तुम बताओ क्या करूं? उस अमीर दरबार की ताकत जो मैं देख रहा हूं, उसके लायक नुमान जैसे लोग ही हैं।
0: यजीद की हिमाकत को मत देखो जिसने तुम जैसे आदमी की ताकत नहीं देखी। या खुद को कूफे के बुजुर्गों से अलग कर दो, या जो काम तुम्हें सौंपा गया है उसे सही से अंजाम दो। उसकी खबर पहुंचा दो और उस पूरे माजरे को कूफे में ही दफन ना होने दो।
2: कौन? कुर्बान जाऊं बेबी, हिलाल इब्ने हनीफ आए हैं। मेरे ख्याल से उन्हें कोई जरूरी काम है।
3: अंदर क्यों नहीं बुलाया?
2: बुलाया लेकिन आने से इनकार कर दिया।
0: और आखिरी बात यह है कि बहुत तमाशा कर रहे हैं और ये सभी लोग सरदर्द बन गए हैं।
1: हाथ और उसके लिखने वालों के बारे में कुछ पता चले तो जरूर मुझे खबर देना।
0: उसे मुझको छोड़ दीजिए।
1: नायला, तुमसे काम था।
0: अस्सलामुअलैकुम। आपकी खैरियत आपके वालिद से दरियाफ्त की। जो देख रहा हूँ वो पहले से बेहतर है। आपका रंग रूप लौट आया है, खुदा का शुक्र है।
1: तुम यही रुको, जनाबे अम्र चले जाएंगे।
0: खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज।

0: तुम्हें दुखी कर दिया क्या?
1: नहीं तो आप भी मुझे माफ कर दें।
0: अब ठीक हो?
1: जी
0: माफी चाहता हूं।
1: सलाम, मेरे बाबा से काम था उसे।
2: सलाम, शर्मिंदा हूँ बिना बताए आ गया।
1: इंतजार ही कर रही थी, मुझे पता था कि मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तुम जरूर आओगे। खुशामदीद।
2: सच बात तो ये है कि मैं ऐसे दलदल में फंस गया हूँ जिससे सिर्फ तुम्हारा बाप ही मुझे बचा सकता है।
1: अगर मेरे बाप से काम था तो उनसे ही बात करते, मुझे क्यों बुलाया?
2: वो मुझसे नाराज है। तुम्हारी पनाह में आया हूँ बिनते ओहद, मेरी मदद करो।
1: क्या हुआ?
2: मेरी बहन का शौहर बासित,

0: बड़े दोगले निकले तुम तो। अली के बेटे का खत भी लेकर जाते हो और अम्वियों के साथ भी उठते बैठते हो।
1: हाँ, मैं खत लेकर जा रहा था, लेकिन क्या तुमने अपनी आंखों से उस खत को पढ़ा है? पता है किसके नाम था जो तोहमत लगा रहे हो?

0: कोई खत लेकर जाना जुर्म नहीं है। इब्ने अली के लिए खत लेकर जाना जुर्म है। अगर कोई जुर्म नहीं किया तो फिर डर के भाग क्यों रहे थे?
1: एक मेहरमाना खत था जो गैरों की आंखों के सामने नहीं आना था।
0: तुम्हारी इन्हीं महरम आंखों ने तुम्हारा काम तमाम कर दिया। अगर जिंदा बच गए तो आज के बाद मैदान में आना, तो अपनी आंखों को छुपा के आना। तुम्हारे जख्म खुर्दा हरीफ का हाफिजा बहुत तेज है। तुम्हारी ऐसी दुर्गत बनाऊंगा कि जिससे मुर्दा और जिंदा दोनों काम जाएं।

0: लोगों के लिए हुकूमत से ज्यादा मुहर्रम कोई नहीं है।
1: चलो यहाँ बहुत खराब हो जाएगा।
2: क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या आसमान जमीन पे आ गया है और हम बेखबर हैं? हद से बढ़ गए हो, दिमाग फिर गया है तुम सब लोगों का। हटो यहाँ से, हट जाओ, इससे पहले कि सलाखों के पीछे डाल दूं। हट जाओ यहाँ से, हटो।
3: इस्लाम का दावा करते हो और बेगुनाहों को कैद कर रखा है तुमने। लानत हो तुम पर और तुम्हारी जालिम हुकूमत पर। ए लोगों, आज एक अजमी की बारी है जिसका कोई जुर्म नहीं था, देखना कल तुम सबकी भी बारी आएगी।
2: कम से कम उसका जुर्म बताओ, फिर इसको कैद में डालो।
4: वो अली का नाम लेता है इसलिए उसके साथ ऐसा सुलूक कर रहे हो। हम भी अली का नाम लेते हैं, शिया एक दो नहीं है। अगर उठ खड़े हुए तो कूफा खून से भर जाएगा।
0: पहले भी बहुत बार हर गली और चौराहे पे ये बात कह चुका हूँ कि यजीद बिन माविया के खिलाफ छोटे से इकदाम की सजा बहुत संगीन होगी। याद रखना, उससे कोई नहीं बच सकता।
2: क्या हुआ, इब्ने हुरैस के जिंदान को मजाक समझ रखा है?
0: जो छोटा बड़ा भी मेरे हाथ लगता है, जो मैं चाहता हूँ उसका एतराफ कर लेता है। लेकिन रह गया ये अजमी मर्द, जिसे खत देकर तुम हमें बेवकूफ समझते हो। जान लो कि मेरे इन संगीन हाथों के तले सबसे पहले तो इसने अपने शरीक का नाम बताया है।
5: मटर,
0: इत्तेफाक से
5: मटर वो ऐसे ही मन घड़ंत बातें कर रहा है।
0: अपनी सास का नाम बताया और फिर अली के बेटे को खत लिखने वाले सब के नाम मैंने उससे उगलवाए कि वक्त आने पर उन सब की खबर लूंगा। लेकिन अगर मैं तुम लोगों की जगह पे होता तो अपना कफन तैयार रखता, क्योंकि मुखालिफीन की फांसी का हुक्म दारुल खिलाफत से आ चुका है।
1: इनकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहे हैं।
2: अली जनाब, रास्ता छोड़ो, पीछे हटो,
3: रास्ता दीजिए,
2: पीछे हटो, पीछे किनारे हो जाओ, हटो, हटो,
3: हटिए, हट जाओ, पीछे हटिए, पीछे।
2: थोड़ा पानी पिलाओ, जुबान बंद रखो। इसके हाथों को ऊपर करो,
6: इसे मजबूती से पकड़ो।

चोरों, बदकारों और कातिलों को तो सजा होती है, मगर खून में लिपटा हुआ यह चेहरा मोहब्बत अली की निशानी है। खुशामद।

0: Basit. Basit. Sindal?
1: हाँ जिंदा हूँ।
2: अच्छा तो तुम बासित हो।
1: अब कोई लफ्ज नहीं बचा। आजादी के रंग देखने की आवाज आवाज ही रह जाएगी और मेरा काम पूरी तरह से तमाम हो जाएगा।
2: अपने दोस्त और रिश्तेदारों को देखकर तुम्हारी जुबान खुल गई? मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगा कि कोई इस जुर्म को अपने सिर ले ले और दूसरा बच जाए।
3: अब तुम बस भी करो, तुम्हें क्या मतलब है मेरे भाई से?
0: देवी, गलती थी जो मैंने उन पर तीर चलाए। मैंने उनके अमीर के सामने तलवार निकाली। खत को मेरे हाथों में देखा था, ना कि तुम्हारे हाथों में। तुम यहां से आजाद हो जाओगे, तुम्हारी बीवी और छोटे बच्चे हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं जुर्म अपने सर ले लूंगा और तुम आजाद हो जाओगे।
1: मत बोलो, अपनी मर्जी से खत ले जा रहा था, उसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगा।
0: जिद ना करो, ये जब तक हम दोनों का खून ना बहा ले पीछा नहीं छोड़ेंगे। खत का इल्जाम मेरे सर। ऐसा ना करो कि तुम्हारी औलाद बिन बाप की ही हो जाए।
1: मौत के मुंह से लौटे आदमी को बीवी बच्चों से क्या लेना?
0: जो भी हो, तुम्हारा सर बुलंद हो बासित। तुम हिलाल की तरह बदनाम नहीं हो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा।
3: तुम कहना चाहते हो कि मैं अपने सर ना लूं और तुम्हें मरता देखूं?
0: मैंने ओहद की बेटी को निजात दी और उसे उसके घर तक पहुंचाया। मेरे जिंदा बच जाने का एहतमाल तुमसे कहीं ज्यादा है। इस तरह हम दोनों जिंदा बच जाएंगे, समझे?
4: बहुत खुश नसीब हो तुम।

0: आया, थोड़ा कुरान पढ़ो, थोड़ा रो लो। ये तुम्हारा गम तुम्हारे बच्चे को भी मार देगा और तुम्हें भी। अपना मन हल्का कर लो, रो लो।
1: आप बताए किसके लिए रोऊं? शौहर के लिए जो मौत का मुंतजर है, या भाई की जुदाई के लिए, या बाप की राह तकते बच्चों के लिए?
0: मत डरो, इब्ने हुरैस ने जानबूझ के ऐसी बात की है ताकि तुम्हारा ये हाल कर दे। मत डरो, उनके पास कोई सबूत नहीं है कि वो उनका खून बहा सके।
1: मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा था कि इनके जाने से मेरा दिल राजी नहीं है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी।
0: बड़ा काम,
1: मैं बड़ी नहीं हूं, मैं ऐसे दर्द के लायक नहीं हूँ कि जो मेरी हड्डियों में चुभ रहे हैं और मेरे जिगर को पाश पाश कर रहे हैं। क्या करूं, नहीं मालूम उसके साथ क्या किया जो उसने अपना मुंह खोल दिया और सारी बातें बयान कर दी। क्या मालूम कि मेरा शौहर अभी जिंदा भी है या नहीं।
0: खुदाया, मेरी हालत देख क्या हो गया। उन्होंने झूठ बोला और तुमने मान भी लिया। मैं उनकी इस गंदी सियासत को जानती हूँ, मैंने दुख उठाए हैं। अगर बासित ने जुबान खोली होती तो यकीन मानो मेरा, आज कूफे के आधे लोग जिदान में यकीनन होते। कुछ भी हो, कोई बासित की बात नहीं कर रहा है।